0: संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर और रतनमाला जी का।
1: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल।
0: और बड़ोदरा पंचमहल गुजरात से रवि जोशी जी का।
1: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का संदेश आया है। लिखते हैं,
1: नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत चार प्रसिद्ध झीलों के बारे में गहन और दिलचस्प जानकारी प्रदान की, सुनकर हम अभिभूत हो गए। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप विश्व के प्रमुख बांधों और प्रमुख पुलों पर भी ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत जानकारी मुहैया करवाने की कृपा जरूर करें। आपको इस हेतु अग्रिम धन्यवाद और आभार।
0: जी, सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आंखों से नेत्रहीन हूं। मैं प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूं। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियां, कविताएं और जानकारियां सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है।
1: धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
0: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था कि कंगारू के कितने पैर होते हैं?
1: इसका उत्तर है साथियों, कंगारू के चार पांव ही होते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कंगारू की पूंछ भी एक मजबूत अंग होती है जो उसके चलते समय उसके संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। वो कई बार चलते हुए अपनी पूंछ का भी सहारा लेता है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो पांच पैरों से चल रहा हो। इसलिए बोलचाल में कहा जाने लगा है कि कंगारू के पांच पैर होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से पूंछ को पांव नहीं माना जा सकता।
0: जी, तो श्रोताओ अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है?
1: प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता में लोग मिट्टी की पट्टियों पर पेंसिल नुमा नुकीले कील से लिखते थे, जिसे कीलाक्षर कहा जाता था। कीलाक्षर यानी कीलों से लिखे हुए अक्षर।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमने पूछा था श्रोताओं कि पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। पेपर शब्द मिस्र में नील नदी के तट पर पाई जाने वाली पेपरिस वनस्पति या घास के नाम से आया है।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था कि कोडेक्स किसे कहते हैं?
1: कोडेक्स आधुनिक पुस्तक के प्राचीन रूप को कहते हैं, जिसमें पन्नों को किनारे से सिलकर या बांधकर पुस्तकें बनाई जाती थीं।
0: जी, और हमारा अंतिम प्रश्न था, जोहन्स गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
1: इसका उत्तर है साथियों, जोहन्स गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार सन 1440 में किया था।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है श्रोताओ, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना न भूलें।
0: तो श्रोताओं अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम, शीर्षक है न्याय।
1: ये कार्यक्रम हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें युवराज सिद्धार्थ के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि पशु पक्षी भी हमारे प्रेम और करुणा के अधिकारी हैं।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो उद्यान के बाहर, कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु।

0: युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
1: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
2: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं।
1: ओह, देखो, एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है। हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
2: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया। भला इसका क्या दोष है?
3: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
2: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है?
4: प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो।
2: मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
1: हाँ मित्र, अभी जाता हूँ।
0: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुँचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
5: कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था। वो इधर ही कहीं आया है।
6: तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है।
5: ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
2: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
6: आहा, तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
2: क्यों दे दो?
6: क्यों दे दो, ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है। भाई, इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
2: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
6: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
0: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
7: महाराज की जय हो,
8: महाराज की जय हो,
9: महाराज की जय हो।
0: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
10: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
5: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
10: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
2: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
10: लेकिन सिद्धार्थ

0: अर्थ देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
1: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
2: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
1: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
0: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
3: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
0: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
3: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
4: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
5: पता नहीं कब ये हंस कैसे बताएगा।
6: देवदत्त में बैठ कर सिद्धार्थ को मिलना चाहिए। इसके पास जा रहा है।
5: फैसला होगा कैसे?
6: देवदत्त तो घर में है।
1: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
7: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
4: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
1: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
8: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
4: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी। हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
0: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
9: महाराज जय हो।
10: महाराज जय हो।
9: महाराज जय हो।
11: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन एकांत वशिष्ठ, कलाकार सुनील लोहिया, शशांक शर्मा, बबीता रंजीत और फरहान नकवी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय। आशा है श्रोताओं, आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ମନକୁ ଶାନ୍ତ ଓ ପବିତ୍ର ରଖିଥାଏ। ଏ ବାଣୀ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜି ସକାଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସମୟ ସକାଳ 6 ବାଜିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶୁଣିପାରିବେ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ। ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରିବ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार संसद में नीट से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
2: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
1: नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कुब्जे में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। किसी भारतीय राष्ट्रपति उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर की 2 के फिलीपींस यात्रा आज से शुरू हो रही है। वे मनीला में आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत ईस्ट एशिया सम्मेलन और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। उनके द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। भारत ने अफगानिस्तान के नूरिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। खाद्य सामग्री और टेंट सहित अन्य राहत सामग्री अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी गई है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत इस कठिन समय में अफगानिस्तान के संकटग्रस्त लोगों के साथ है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु का दौरा करेंगे। श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में GNKNM नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति तिरुप्पुर में अविनाशी लिंगेश्वर शिव मंदिर भी जाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री श्री मोदी

को विजयनगरम जिले के भोगपुरम में अलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करेंगे। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन 1 अगस्त को प्रस्तावित है। श्री चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह, पीयूष गोयल, मनोहर लाल खट्टर और सीआर पाटिल के साथ राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर कर सकते हैं। युवा कार्यक्रम विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस प्रश्नोत्तरी में बहुविकल्पीय 20 प्रश्न हैं। 10 मिनट के अंदर इनके उत्तर देने होंगे। हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत का पहला मैच 15 अगस्त को वेल्स के साथ होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुन सुन 100.4 आकाश बने फिर मन पकड़ दिल से दिल तक सुन आज सकाळ रो मॉर्निंग अपडेट कोन रो इच्छा आपण मन पई आज सकाळ रिपोर्ट कोची सकाळे सूर्योदय सकाळ 5टा बजे 18 मिनिट रही छि सूर्यास्त हबो संध्या 6टा बजे 28 मिनिट रे आ पानी पगर कथा देखिले आज दिन रो तापमात्रा सर्वनिम्न रहिबो 26 डिग्री सर्वाधिक 29 डिग्री वर्तमान रो जे देखबा कटक भुवनेश्वर आखो पक अंचल रे 26 डिग्री तापमात्रा मध्ये सेल्सियस रहिछि सबटु बड कथा होउछि वर्षा पग रहिछि झिपझिप वर्षा होउछि पग कोहला रहिछि ठंडा रहिछि त गतकाल भलि आज मध्ये दिन तमाम वर्षा झिपझिप रहिबो पग कोहला रहिबो सूर्यंकर देखा मिली पारे न मिली भी पारे किंतु पग एकदम कोहला रहिबो झिपझिप वर्षा मध्ये रहिबो कारण जहां रिपोर्ट मिलिछि जो मौसम सक्रिय होइतिबारु ओडिसा उपकूल रे मौसम रो सक्रिय होइतिबारु आज ओडिसार विभिन्न स्थान रे हल्का रु मध्यम धरण वर्षा हबार मध्ये संभावना रहिछि विशेष करी अमर जो रहिछि सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर केन्दुझर मयूरभंज ए सब जिल्ला रे भारी वर्षा हबार मध्ये प्रबल वर्षा हबार आशंका रहिछि से भली आउ कतरी जिला जो भली बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगत सिंहपुर कटक सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर केन्दुझर मयूरभंज वर्षा पवन सहित हेवी वर्षा हबार वज्रपात हबार संभावना रहिछि तबे अन्य स्थान मानकर दिन तमाम वर्षा लागि रहिबो तनु एक प्रकार मौसमी सक्रिय जोगु सारा राज्य रे वर्षा लागि रहिबो आज दिन रे

0: আর পরবর্তী কার্যক্রম সমাচার প্রভাত পরে পরে মর্নিং নিউজ রিলেকে প্রচার করছু আকাশবাণী দিল্লি কেন্দ্র।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा
2: बैठक शुरू है विमर्श जाएगा मान श्रेणी के पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आई वन को उपकरण कार्रवाई का श्री मोदी ने श्रीधर छात्र और समाधान अस्पताल

बच्चों या पारित कर दिया है। पर पाबंद भारत प्रतियोगिता आज भारत करेंगे। धन्यवाद।

0: उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लागू करने के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई।
1: योजना के तहत सरकार न केवल स्कूटर बल्कि उसका बीमा, पंजीकरण, हेलमेट, आवश्यक सहायक उपकरण और 4 लीटर पेट्रोल भी मुहैया कराएगी। दिव्यांग छात्राओं, शहीदों की बेटियों और गरीब परिवारों की बेटियों के लिए आय सीमा की शर्त में छूट भी दी जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि ये योजना उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ाएगी और खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की छात्राओं के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुंचना आसान बनाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित कर दिया।
2: यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा। तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि सरकार सदन में नीट सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।
3: और मैं कहूंगा कांग्रेस और विपक्ष के साथियों से, हम संसद के पटल पर हर प्रकार के संवाद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपकी जो मर्यादाएं तोड़ने की परंपरा बनती जा रही है, जो अराजकतावादी सोच आपके अंदर विकसित हो रहा है, निश्चित रूप से इससे देश कहीं न कहीं दुखी है और देश अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है।
0: भारत ने विश्व व्यापार में अपनी बढ़ती भूमिका पर बल देते हुए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित, पारदर्शी और भेदभाव रहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका तथा व्यापार संधि, उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर

0: बल दिया। वाणिज्य विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत समावेशी वैश्विक विकास में भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष सिंगल्स के ही शुरुआती दौर में आज आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अम्स करुणन, मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे तथा तनीषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला भी चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा भी की है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की जयंती पर उनका स्मरण किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि समाज के प्रति उनकी सेवा और महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक विधेयक पारित कर दिया है। संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन में वोट दिया। इसके तहत स्कूल में विद्यार्थियों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले से फ्रांस सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2028 से जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अमेरिका में इन दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त से अमेरिका में आयात होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 2 साल तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नास।
2: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष के धरने, छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान संबंधी समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। नवभारत टाइम्स का शीर्ष समाचार है, जंतर मंतर पर लौटी भीड़, पीएम के घर के बाहर से विपक्ष के नेता हटाए। पत्र ने प्रधानमंत्री मोदी के कथन को भी सुर्खियों में जगह दी है, पेपर लीक के दोषियों को नहीं बख्शा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पेपर लीक को बताया घोर पाप। राजस्थान पत्रिका, लोकसत्य, दैनिक ट्रिब्यून और अमर उजाला ने धरना दे रहे विपक्षी नेताओं की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। जनसत्ता और दैनिक भास्कर ने सिक्किम में एक निर्माणाधीन सुरंग ढहने से हुई मजदूरों की मौत के समाचार को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। पत्रों ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मजदूरों के आश्रितों को अनुग्रह राशि की घोषणा का उल्लेख करते हुए सुरंग के प्रवेश द्वार और राहत अभियान का चित्र प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने पॉजिटिव न्यूज स्तंभ के अंतर्गत राजस्थान के आंधी गांव का उल्लेख किया है, जिसे बायोटेक वैज्ञानिक डॉक्टर सुदीप्ति अरोड़ा ने 100% कचरा रहित और आत्मनिर्भर बना दिया है। पंजाब केसरी ने कमर्शियल जहाज पर हुए रूसी हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद रूसी राजनयिक को तलब किए जाने का समाचार सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर पर आधारित संपादकीय को शीर्षक दिया है, सुरक्षा की फिक्र। पत्र का कहना है कि भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए विदेश जाते हैं और वहां से विदेशी मुद्रा यहां भेजते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलती है। मगर सवाल यह है कि विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है।
0: और लीजिए अंत में सुनिए मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की 3री बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार

0: घर खर्च पाई पैसा दियो हस्बैंड जी
1: ये सौदार 15,000 परिवार 2,000
0: आउ लाइट बिल
1: एबे जीरो पैसा केमिति देबी
0: ओहो भूली जाई थिली एबे तो सोलर पैनल लागि जाई छी ना ताहेले जो 4,000 बंचिला सेथिरे शॉपिंग करा जाउ
1: निश्चय पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना जोड़ी हेबा पाई विजिट करंतु pmsuryaghar.gov.in
2: हर घर सूर्य घर
3: दिल से दिल तक सुनिबे कार्यक्रम मो पसंद
4: हेलो हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मु आपनकर साथी जैस्मिन स्वागत करूची आपनकर आमर आम समस्तंकर प्रिय प्रोग्राम को जहर ना हला मो पसंद ओनली ऑन एआईआर एफएम बोकाटक दिल से दिल तक रे
5: शुभ सकाळर शुभेच्छा शुभकामना आउ नमस्कार सहित मु नमिता आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे
4: मन कथा मु मनरे रखिछि करिबी तुमको निजर
5: मो भल पाइबा सत्त होइथिले तुमे हेबनी आउ कहारा
4: तुमे काही मते भल लागैति जानेनी कारण तार
5: खोजे राति दिन तते मन रहिबाकु पाखे तोरा

0: साथी ताहले एबे चलंतु कथा हेबा आउ सुनिबा आपनको पसंदर गीत। हेलो मो पसंद के कहउ चंती
1: भौणी नमस्कार जय जगन्नाथ वर्षा विजय नमस्कार मु कहथली राजेश नायक फ्रॉम चर्चिका बाजार जगतसिंहपुर।
0: राजेश नायक बहुत दिन पर कॉल
1: दीर्घ वर्ष सहित कनेक्ट है
0: हजि जाती
1: कार्य व्यस्त थी सहित बापा बर्षिकिया भी थी अन्य घर कम मत तो समय जमा मिले आज तो बर्षार कड़े जाए बस आज जहाँ भी आज मो पसंद कल कर बहुत ट्राए कला लगला
0: वर्षा दिन तो आसला वर्षा तो हम निश्चय बिल बाड़ी कृषक भाई मान समस्त दरकार उत्ताप रु रक्षा पाइबा वर्षा टा दरकार
1: निश्चिंत भाव आम तो हूँ चषा लक्ष्य जीव पोषा तेणु आम तो अनेक बसल चातक परीक्षा वर्षा को बर्तन तली फली पड़ो आम पांच छह एकर धान चाष अच्छी
0: अरे पांच छह एकर चाष कौन कम है
1: करवा पड़ू जेहेतु आम पैतृक संपत्ति अच्छी आज लोक मिलूना बंगाली मान आसिक रोते जहाँ जमी चली हाथ करुचु कि भाग काट दे सब तो कर मु तो पोख तो चाषी ना मु धान काटी मान दि एकर काटी सहित तली रोईवा ये सब मुझे बर्तमान बर्तमान टे मान पंद्रह कोड़े वर्ष चलता बर्तमान मो कार्य व्यस्त अच्छी तेणु लोक पक कर सान भाई बुझा बुझी कर मो भी जगह रखा कर
0: मो कम व्यस्त अच्छी से कम आम को न कही सब श्रोता बंधु मान जना
1: मोर तीन चार कम अच्छी एक नंबर कम हूँ मो फोर व्हीलर फाइनान्स रिफाइनान्स करे दि नंबर कम हूँ रियल स्टेट कम मो जगा बाड़ी बिक्री खरीदी करे जगत सिंहपुर कटक भुवनेश्वर ऑल ओवर ओडिशा
0: तार
1: कम हूँ मो एस्ट्रोलॉजी विद्या करे ज्योतिष विद्या करे जातक हाथ वास्तु ये सब देखे
0: एक कथा आम सब तो जानी किंतु आमर जो नुआ श्रोता बंधु मान शुणुंट नुआ नुआ से विषय आने निहाती दरकार ना कौन
1: ता सहित भी किसी पढ़ा पढ़ी अच्छी आप प्रोग्राम शुणे गीत कविता भी लिखे तो मुझे आगे पढ़ी फिर भी आज जेहेतु बहुत दिन पर कनेक्ट है गोटे कविता पढ़ा भी बहुत इंटरेस्ट अच्छी
0: निश्चय आम तो चाहबू आप कविता पढ़ंतु भी कविता

0: साथी आपण भी जदि एमिती निज मनर कथा आम सहित बांटिबाकु चाहुचंती
1: आउ निज पसंद गीत सुनिबाकु चाहुचंती ताहले आमको कॉल करंतु
0: आमको कॉल करिबा पई आम नंबर हैला 0671230314906712303149
1: 0671230314409 एटी आमरा फोन नंबर
0: प्रत्येक शुक्रवार दिन 12:00 गोटाई पर्यंत कॉल करिबार समय
1: भूलिबेनी साथी निश्चय कॉल करिवे
0: ନିଦମ ବିଛେଇ ଦେଇଛି ନିଶ୍ୱାସର ନଈ ଧାରେ
1: ନିଦ ଭରା ରାତି ନିଅଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତୁମକୁ ଭେଟିଲା ପରେ

प्रेम बिना एले कारो प्रेम तुम्हें बांधी हुओ ना ना ना ना यार दुनिया टा बुनचे ना प्रेम बिना एले कारो प्रेम तुम्हें बांधी हुओ ना ना ना ना यार सब नरा

बाघ को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साये से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।

0: NODL बिजुली उपभोक्ता आपण जानंती कि एबे 25 वर्ष पई बिजुली बिल चिंतारु मुक्ति पीएम सूर्य घर योजना रे मात्र 1875 टंका दे आज्ञा हां मात्र 1875 टंका रे निजो छातो ऊपर सोलर पैनल बसंतु एवं वर्षक 5000 टंका पर्यंत संचय करंतु आज ही 18003456718 किंबा 1912 रे जोगाजोग करंतु।
1: ओडिशा सरकारक समवाय विभाग तरफ रो राज्यर समस्त कृषक भाई भौनी मानको सूचित करा जाउछि जे चलित 2026 मसिया खरीफ ऋतु पई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे निज फसल धान मका कपा अदा मांडिया चीना बादाम हळदी ओ हरड़ चासर बीमा पंजीकरण कराइ नियंतु। भाग चासी ऋणी ओ अणऋणी चासी समस्त निज फसल बीमा पंजीकरण निर्धारित तारीख 31 जुलाई सुद्धा निकटस्थ कृषि समवाय समिति जथा पैक्स लैंप्स बैंक शाखा किंबा जनसेवा केन्द्र रे कराई परिबे। चासी पिछा 5 एकड़ जमीर फसल बीमा पंजीकरण संपूर्ण देयमुक्त अटे। प्लॉट पिछा केवल 1 टंका दबाकु पड़िबो। अधिक विवरणी पाई निकटस्थ कृषि समवाय समिति जेकोनोसी बैंक शाखा किंबा कृषि और समवाय अधिकारी को जोगाजोग करंतु।

0: घर खर्च पाई पैसा दियो हस्बैंड जी
1: ये सौदार 15,000 परिवार 2,000
0: आउ लाइट बिल
1: एबे जीरो पैसा केमिति देबी
0: ओहो भूली जाइथिली एबे तो सोलर पैनल लागि जाइछि ना ताहेले जो 4,000 बंचिला सेथिरे शॉपिंग करा जाउ
1: निश्चय पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना जोड़ी हेबा पाई विजिट करंतु pmsuryaghar.gov.in।

0: हे प्रभु, ए मासरे भी एते इलेक्ट्रिक बिल केमिति देबी?
1: अरे राजू भाई, पीएम सूर्यघर योजनार यूएलए मॉडल थाउ थाउ तोर एते चिंता काहे कि जे? मु तो मो घरे सोलार लगाई देलिनी, बिजली बिल टेंशन रु मु पूरा मुक्ति।
0: सतरे भाई?
1: हाँ भाई, मात्र 1875 टंका रे, पुणी एथिरे वार्षिक 5000 टंका पर्यंत बिजली बिल रे संचय हेबो, ता सह 5 वर्ष जाए मेंटेनेंस खर्च भी नहीं।
2: आज्ञा हाँ, आज ही अधिक सूचना पाई निकटस्थ विद्युत कार्यालय अथवा 1800-345-718 रे जोगाजोग करंतु।

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: हुनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम।

जी हाँ, जिंदगी के सफर में जो मकाम चले जाते हैं वो फिर नहीं आते। सिद्धि पाई जीवन का जर्नी व लाइफ जर्नी पाई अनेक गुड़ी नियम भी अच्छी जो नियम को मानिले हमें आम जर्नी रे सफल हो पार आम डेस्टिनेशन आमको जल्दी मिल पार। तबे बंधु लाइफ जर्नी रा किछि नियम गुड़िक हूँ आपको प्रथम तो निज जीवन में ट्रुथफुलनेस लॉयलिटी ऑनेस्टी सहित चलने पड़ो आनोटी जिनस नहीं लाइफ जर्नी रे जी आग को बढ़ी था मनीष के हारे ना खाली जहाँ सब समय उपर छाड़े आपे ठीक हिजबा सहित आपण का लाइफ जर्नी भी सेमती स्मूथली चली पार कारण ये परिवर्तनशील दुनिया जितेबले सबकि चेंज हो सबकि परिवर्तित होते समय सह सब ठीक हो जाए प्रत्येक परिस्थिति रे संयमता और सकारात्मकता मनोभाव आम भितर निहाती डेवलप आपको कराया पड़ो कहीं आमको आग को बढ़ापी दुईट जिनस जथेष शक्ति देता है सब स्वप्न को साकार करने आम भितर से निष्ठा रहा दरकार से परिमाण अध्यवसाय आम करवा दरकार आहत सब इम्पोर्टेन्ट कौन बंधु सब इम्पोर्टेन्ट हूँ कि आम सबू रास्ता जहाँ भी रास्ता हूँ आपण जेकोसी लक्ष्य

वेलकम बैक बंधु ट्यून कर चुनती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक देवी प्रसाद अच्छे अपन का सहित सो चली छी किछि कथा किछि किताब तबे बंधु किछि समय पूर्व रो आमे जमते कथा होतले कि लाइफ रा जर्नी जते भी टफ हो सी टफ जर्नी को हमकु अनेक नियमावली सहित आगु को बढ़िले आमे निहाती भाबरे हम डेस्टिनेशन रे पहुंच परबा तबे ई लाइफ जर्नी रे प्रत्येक ती सकाळ जितेबेले आमे प्रत्येक दिन सकाळ उठू सेई सकाळ ही आम पई गुटिए नुआ सुजोग बा नुआ चांस निज जीवन को आउतरे सुंदर रास्ता रे नई सेई डेस्टिनेशन आमे जो डेस्टिनेशन निर्धारण करथौ से डेस्टिनेशन रे पहुंचबारो गुटिए बहुत ही बढ़िया सुजोग अतीत रे बीती जायतिबा पृष्ठा गुडी को मने न पकाई वर्तमान रा सीढ़ी रे ऊपर को चढ़ी पारिले आसुथिबा फ्यूचर खूब सुंदर ही जाए आसंता काली रो भय बा संभावना मध्य आम भितरे न रहिबा दरकार निज वर्तमान को खराब न करबा आवश्यक कारण आपनकर आज ही आपनकर बेटर टुमोरो डिसाइड करिवो तो सबले मन रखंतु कि आज जो स्थान रे आपन अछंती जहां भी आज आपनक हाथ रे अछि आसंता काली कथा भाभी भयभीत हबार नहीं किंबा गत कालीर कथा को मन पकई मध्य आपन को दुखित हबार नहीं तो लाइफ रो जर्नी जहां रही आग पछ नुहे बरंगा वर्तमान स्थिति रे आपन जोठी अछंती सेई स्थिति को आपन अधिक मजबूत करी पारिले आपनकर वर्तमान तो भल हब ही हब एवं लाइफ जर्नी रे आपन जो डेस्टिनेशन रे पहुंचा पई चाहउछंती जो स्थान रे पहुंचा पई चाहउछंती सेई स्थान रे आपन फ्यूचर रे कोनोसी भी बाधा विघ्न बिना आपण जाई पहुंच परबे तनो सबोले मन रखंतु पास्ट आउ फ्यूचर ए दुईटी जिंस को छाड़ी आपण सबोले वर्तमान रे बंची लाइफ रो जर्नी को आगो को नहीं चालंतु निज लोक मानक सहित रहंतु निज लोक मानक भलो पांतु एवं सबोटो इंपोर्टेंट लाइफ रे गुटिए गोल डिसाइड करंतु आउ से गोल डिसाइड करी निज जीवन रो जर्नी को आगो को नियंत्रण

वेलकम बैक फ्रेंड्स, ट्यून कर छंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक सो चली छे किछि कथा किछि किता वे देवी प्रसाद। तबे फ्रेंड्स, आज हमें लाइफ जर्नी विषय कथा होतिले। तबे लाइफ रो जर्नी भितरे सो रो जर्नी मध्ये धीरे धीरे धीरे धीरे हमें कथा होचे लाइफ जर्नी विषय, किंतु सो रो जर्नी एबे शेष होबाकु जाउचे आ अल्प किछि समय, किंतु अल्प समय भितरे भी मु आपनकु कहि रखुचे कि लाइफ रो जर्नी केवल डेस्टिनेशन ओरिएंटेड होबा आवश्यक नुहे, बरंग प्रत्येक गुड बैड एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करिवार क्षमता आम पाखे रहा ही प्रकृत लाइफ जर्नी गोटे पार्ट। प्रत्येक चैलेंज को मुकाबला करिबा एवं प्रत्येक मुहूर्त को सार्थक कर बचा ही जीवन यात्रा रे प्राइमरी एम हवा आवश्यक। जीवन यात्रा रे जदि आम भल काम करिबा सहाय्य सहयोग को पाथेय कर मानविकता को अपनेबा ना बंधु, तेबे आमर जीवन प्रकृत पक्षे सार्थक होइछि आम जानपर। तेबे सो तो ये शेष करने पड़ो, किंतु आपनकु आज आम कथा होते कि क्यों भली भाव आम लाइफ जर्नी व जिंदगी के सफर कैसे हम तय कर सकते हैं, और टॉपिक सहित आज किछि कथा किछि गीतर कार्यक्रम आपण सुनुथिले, ता सहित सुनुथिले ढेर सारा सुंदर गीत। तबे किछि कथा किछि गीत कार्यक्रम को ये वाइंड अप करने पड़े, परवर्ती कार्यक्रम आपण सुनी परिवे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा, पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। कार्यवाही शुरू होते ही सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उपलब्धि, पर्यावरण अनुकूल परिवहन और मानवता के हित में वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग की दिशा में भारत की प्रगति को और मजबूत करेगी। इसके बाद सभापति ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन को स्थगित कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार में आईएनएस कादम्बा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। आईएनएस मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
1: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमरीका ने स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई, साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की। बैठक के दौरान उन्होंने हिंद प्रशांत पर आसियान के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए क्षेत्रीय चुनौतियों और अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया। समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक

वेलकम बैक फ्रेंड्स, ट्यून करी चंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो करकू। समय वर्तमान गोटेबाजी 10 मिनट।

0: 멋진 걸음 아사히 집어넣기 머리와 고르지 고리라
1: मासक मास विद्युत बिल बढ़िवारे लागी भारी असुविधा हलानी
2: हां जेहले करिबा कोन घरे नाना काम रहुचे गरम भी संभाली होउनी
3: मामा कोन हैला इते चिंता रे काहे कि अछो
1: किछि नाइलो मा ए करंट बिल कथा भाबुथिली आउ कह मो मामा रो पढापडी केमति चलीची
3: भलो चलीची बापा आज स्कूल रे हम सर पीएम सूर्य घर योजना विषय रे कहउथिले घरे सोलर पैनल लगाइले प्रति मास रे 300 यूनिट पर्यंत विद्युत बिल बचाई परिबा आउ सरकार एथिरे 3 किलो वाट पे 1,38,000 टंका रे सब्सिडी मध्य दउचंती
2: हां सते लखे रु अधिक सब्सिडी
3: हां मामा संचय भी सुविधा भी
1: आसुन 1800345678 किंबा 1912 रे कॉल करी ए योजना विषय रे अधिक बुझिबा

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत आईएनएस मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र पर गहन चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा कि बहस जितनी भी लंबी चले उतनी लंबी होनी चाहिए और यथाशीघ्र शुरू होनी चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने इस तरह की बाधाएं खड़ी की जिससे प्रतीत होता है कि वे संवाद में शामिल नहीं होना चाहते।
1: देखिए, जो अपोजिशन पार्टी बोलना चाहते वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते। लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के पास विरोध प्रदर्शन करना विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है।
2: संवैधानिक पद पे रह के संविधान की गरिमा को तार तार किया, उनका ये आचरण बहुत ही खतरनाक मंशा से वो भारत में दूसरे देशों का नकल करके यहाँ उपद्रव कराना चाहते हैं।
0: भाजपा सांसद डॉ. सतीश पूनिया ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करके कांग्रेस पार्टी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि विद्यार्थियों

0: का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के साथ है और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने युवा नेतृत्व वाले विकास के मंत्र को विकसित भारत को मजबूत करने की नींव बनाया है।
1: आप सब जानते हैं कि नीट जैसा एग्जाम जिसमें 20 से 22 लाख कैंडिडेट्स अपियर होते हैं उसकी तैयारी में 6 महीने लगते हैं, लेकिन मात्र 37 डेज में नीट का री एग्जामिनेशन किया गया और रिजल्ट भी मात्र 25 दिन में आप सभी के सामने ला खड़ा कर दिया गया। जो री एग्जामिनेशन हुई उसमें टेक्नोलॉजी को लेवरेज करा गया ताकि कहीं पर भी अगर किसी भी प्रकार का लूप होल हो उसको कर्ब किया जाए, उसको प्लग इन किया जाए।
0: सुश्री स्वराज ने बताया कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पेपर लीक के 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब वे सभी जेल में हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले और विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए और राज्यसभा दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। इससे पहले जब लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू करने के लिए एकत्रित हुई तो अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि सरकार इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार है और चर्चा के समय को लेकर सभी को एकमत होना चाहिए। हंगामा जारी रहने पर श्री बिड़ला ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो विपक्ष ने नीट मामले पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रश्नकाल संसदीय कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये सदस्यों का अधिकार है।
2: आजादी के 50 साल बाद सदन ने यह संकल्प लिया था कि किसी भी हालत में क्वेश्चन आवर और जीरो आवर चलाएंगे। ये मेंबर्स के आवर है। आपके प्रश्नों को के उत्तर तैयार करने में कितना श्रम जाता है और जनता का धन जाता है, आप इसकी कल्पना करिए। आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है, प्लीज अपनी सीट पर बैठिए और क्वेश्चन आवर चलने दीजिए।
0: बार बार अपील करने के बावजूद विपक्षी सदस्यों ने उपसभापति की सलाह पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण सदन को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार आईएनएस कदंबा नौसेना बेस पर माहे श्रेणी

0: के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। आईएनएस मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
1: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आईएएसवी त्रिवेणी पर सवार होकर पहली बार सभी सेनाओं की महिला सदस्य समुद्री अभियान समुद्र प्रदक्षिणा ने न केवल पृथ्वी का चक्कर लगाया बल्कि इस असाधारण उपलब्धि से करोड़ों भारतीयों को गौरवान्वित भी किया। उन्होंने आईएएसवी त्रिवेणी को आत्मनिर्भर भारत और भारत के नवाचार क्षमताओं और आत्मविश्वास का जीवंत उदाहरण बताया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमरीका ने एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई, साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की।
2: In this era of volatility and disruption,
3: उथल पुथल के इस दौर में आपूर्ति श्रृंखला पर सबसे अधिक दबाव दिख रहा है। ऊर्जा, भोजन और स्वास्थ्य सुरक्षा को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना बहुत जरूरी है। वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। साथ ही भारत और आसियान दोनों ही अपने भविष्य को लेकर उम्मीद से भरे हैं, इसलिए चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें मौकों पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए।
2: इवन वाइल एड्रेसिंग चैलेंजेस,
0: बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि बैठक में भारतीय अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अमरीका के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान को हुरमूज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण की अनुमति देना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नौवहन की स्वतंत्रता के लिए एक बेहद खतरनाक कदम होगा। डॉ जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान फिलीपींस, रूस और सिंगापुर के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होगी। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। 16 जिलों में पानी भरा हुआ है। राज्य में बाढ़ में 21 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे मृतकों की कुल संख्या 31 हो गई है।
4: आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में 872 गांव अभी भी जलमग्न हैं और 5,64,000 से भी अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 24,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है। कामरूप और कामरूप महानगर जिलों में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जहां 4,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। राज्य सरकार ने 71 राहत शिविर और 202 राहत वितरण केंद्र स्थापित किए हैं। इन शिविरों में 12,000 से अधिक लोगों को आश्रय दिया गया है, जबकि 1,00,000 से अधिक प्रभावित लोगों को राहत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। NDRF, SDRF, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज तथा स्थानीय प्रशासन की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्य में

0: लगातार जुटी हुई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 753 अंक गिरकर 76,717 पर और निफ्टी 202 अंक की गिरावट के साथ 23,986 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत आईएनएस मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्रों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश।
1: नमस्कार, आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुंट रश्मिता दास। मुख्य संवाद, विभिन्न प्रसंगक नहीं विरोधी हट्टगोल जोगु संसदर गृह कार्य बाधाप्राप्त, प्रश्नपत्र प्रघट प्रसंगे समस्त अंशीदार आलोचना पर सरकार प्रस्तुत कहले संसदीय व्यापार मंत्री। महाप्रभु बाहुड़ा यात्रा प्रस्तुतिर समीक्षा कले मुख्यमंत्री, श्रद्धालु प्रशासन और पुलिस मार्गदर्शिका अनुसरण कले नवेदन। देशव्यापी आज पालन जातीय पताका अंगीकार दिवस एवं बंगोपसागर और पार्श्वर्ती अंचल घूर्णिवलय सक्रिय प्रभाव में राज्य में लग रही वर्षा। नीट प्रश्नपत्र प्रघट मामला एवं अन्यान्य केतक प्रसंग नहीं विरोधी प्रतिवाद जोगु लोकसभा गृह कार्य आसंताकाली पर्यंत मुलतवी रखाई। लोकसभा आज पूर्वाह्न गृह कार्य आरंभ हेबा मात्रे विरोधी सदस्य प्रतिवाद करिवारु गृह परिचालना

वेलकम बैक फ्रेंड्स, ट्यून करछंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को। देवी प्रसाद छ अपन को सहित बने के रखी छी अपन को दिल से आव दिल तक रा कनेक्शन ओनली ऑन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक। समय वर्तमान 2:45 ही सरी छी। एबे समय आपन को केतटी ओडिया पुराना चलचित्र रा गीत सुनेबारा

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: झाड़ू जब तक एक सूत्र में बंधी होती है तब तक वह कचरा साफ करती है, लेकिन वही झाड़ू जब बिखर जाती है तो खुद कचरा हो जाती है। इसलिए हमेशा संगठित रहें और बिखर कर कचरा न बने।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद एकता और संगठित रहने का सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। श्रोताओं, हमें पहला संदेश मिला है कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: डॉक्टर कामिल बुल के 24 तारीख को सुने, बेल्जियम में जन्मे कैसे भारत को अपना कर्मभूमि बना लिया, रामचरितमानस पर शोध किया और कामिल बुल के से कामिल बुल के बाबा बन गए। बहुत अच्छा लगा इतनी अच्छी जानकारी और प्रस्तुति के लिए। उमंग टीम को बहुत बहुत बधाई।
0: और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर का।
2: भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से परमिंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा और सुरेंद्र कौर रंधावा जी का।
0: और गणेशवाड़ी कोल्हापुर महाराष्ट्र से संभाजी सुतार, चेतन सुतार और सारिका सुतार जी का।
2: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए के अंतर्गत आज की कड़ी। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं भारत के अनूठे मेलों की,
2: ऐसे मेलों की जो प्रयास है समुदायों को उनकी संस्कृति से जोड़ने का। इनके बारे में लोगों को अधिक पता नहीं है, लेकिन वे अपने आप में सचमुच अद्भुत हैं, जीवंत हैं और प्रेरणा देने वाले भी। तो कल हमने चर्चा की थी असम राज्य के जॉनबील मेले की, जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का आज भी प्रचलन है।
0: आज हम चलेंगे एक और सुंदर और मनोरम उत्तर पूर्वी भारत के पर्वतीय राज्य नागालैंड और जानेंगे एक और मेले के बारे में। इसे हॉर्नबिल मेले के नाम से जाना जाता है। तो विमलेश जी, अब चर्चा को आगे बढ़ाइए।
2: जी अजीत जी, श्रोताओं, हॉर्नबिल महोत्सव या मेला नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक मेला है। इसे त्योहारों का त्योहार यानी फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। अजीत जी, अब जानते हैं कि ये कब मनाया जाता है।
0: जी विमलेश जी, हॉर्नबिल मेला हर साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है।
2: जी,
0: ये कोहिमा के पास किसामा हेरिटेज विलेज में आयोजित किया जाता है। लेकिन विमलेश जी, एक स्वाभाविक प्रश्न मेरे मन में आता है और वो ये है कि इस उत्सव या मेले का नाम हॉर्नबिल क्यों पड़ा।
2: अजीत जी, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आपने।
0: जी,
2: इसका जवाब भी उतना ही सुंदर है। हॉर्नबिल एक पक्षी है जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये जबरदस्त उड़ान भर सकता है। इसके पंख इतने शक्तिशाली होते हैं कि जब ये उड़ता है तो उसके पंखों की फू फू जैसी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है।
0: जी विमलेश जी, पूर्वोत्तर भारत में विशेषकर नागालैंड में इस पक्षी को यानी हॉर्नबिल पक्षी को साहस, सम्मान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
2: जी, यही वजह है कि नगा परंपराओं में विशेषकर सर के आभूषणों में हॉर्नबिल पक्षी का प्रतिरूप अवश्य दिखाई देता है। आइए अब जानते हैं कि क्या होता है हॉर्नबिल मेले में।
0: श्रोताओं, इस मेले में रंग बिरंगे पारंपरिक नृत्य देखने को मिलते हैं।
2: जी,
0: जिनमें सबसे लोकप्रिय और आकर्षक है युद्ध नृत्य।
2: जी,
0: युद्ध नृत्य में पुरुष योद्धा पारंपरिक हथियार लेकर नृत्य करते हैं। तेज ड्रम की ताल, वॉर क्राई और तालबद्ध पैरों की गति के साथ ये नृत्य होता है।
2: जी
0: विमलेश जी, एक बहुत विशेष बात तो हम भूल ही गए थे, ये तो बता दें कि इस मेले के दौरान एक बड़ी खास प्रदर्शनी होती है जिसे मोरुंग कहते हैं।
2: जी,
0: ये मोरुंग होता क्या है।
2: अजीत जी, मोरुंग नागालैंड की जनजातियों का युवा आवास हुआ करता था। ये बांस और लकड़ी से बना हुआ बड़ा सामुदायिक भवन होता था।
0: जी, प्रत्येक गांव में कम से कम एक मोरुंग अवश्य होता था। वहाँ जनजातीय इतिहास, युद्ध कौशल, वाद्य संगीत और लकड़ी के हस्त कौशल सिखाए जाते थे।
2: जी, यहाँ हस्तशिल्प, हैंडलूम यानी हस्तकरघा, स्थानीय व्यंजन इत्यादि प्रचुरता से मिलते हैं।
0: श्रोताओं, ये उत्सव नागालैंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रदर्शन है।
2: जी,

0: यहाँ आकर लोग असली नागा जनजातीय जीवन, आतिथ्य और उनकी परंपराओं की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी नागालैंड के बेहद खास मेले हॉर्नबिल उत्सव की।
1: जी।
0: कभी नागालैंड जाएं तो इस मेले का आनंद जरूर लें।
1: जी।
0: तो अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
1: मोरुंग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मोरुंग किसे कहते हैं? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश हमें भेज सकते हैं। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है सुंदरिया।
1: कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक प्यारी गाय सुंदरिया की कहानी बताई गई है और उसके माध्यम से बच्चों को संदेश दिया गया है कि पशुओं में भी भावनाएं और संवेदनाएं होती हैं।
2: एक समय की बात है, हरियाणा के एक गांव में एक किसान रहता था। नाम था हीरा सिंह। निर्धनता के कारण बड़ी मुश्किल से उसके परिवार का गुजारा चलता था। उसके पास एक गाय थी, नाम था सुंदरिया। उस गाय के कारण हीरा सिंह से गांव वालों को बड़ी ईर्ष्या होती थी। निर्धनता का ये हाल था कि हीरा सिंह सुंदरिया के लिए चारा भी नहीं जुटा पाता था। वो भी गाय को बहुत प्यार करता था। वो चाहता था कि किसी प्रकार गाय को अच्छा चारा मिल सके, लेकिन तंगी पीछा नहीं छोड़ती थी, इसलिए कई बार उसके मन में एक विचार आया।
3: अब तो सुंदरिया को पालना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। कहां से आएगा उसके लिए चारा? यहां तो परिवार के खाने के लाले पड़े हुए हैं। सोचता हूं उसे किसी धनी किसान को बेच दूं, कम से कम अच्छा चारा तो मिलेगा उसे।
2: लेकिन हीरा सिंह अपने बड़े बेटे जवाहर सिंह से डरता था, क्योंकि उसे सुंदरिया गाय से बहुत लगाव था। जवाहर सिंह सुंदरिया को प्यार से मौसी बुलाता था। समय बीतता गया और आखिर परिवार की दरिद्रता समाप्त करने के लिए हीरा सिंह नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गया। वहाँ एक सेठ के यहाँ उसे चौकीदार की नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ ने कहा,
4: हीरा सिंह, शहर में आजकल दूध की बड़ी किल्लत हो रही है।
3: जी मालिक, ये बात तो है।
4: पता नहीं जो दूध तुम दुकानों से लाते हो वो ठीक भी है या नहीं। बहुत मिलावट चल रही है। तुम तो हरियाणा के हो, सुना है वहाँ की गायें बड़ी अच्छी और दुधारू होती हैं। एक काम करो, तुम हमारे लिए किसी अच्छी गाय का प्रबंध कर दो।
3: जी मालिक, कोशिश करता हूँ। वैसे एक गाय है मेरी निगाह में।
4: अच्छा?
3: ऐसी कि साक्षात कामधेनु। दूध भी 15 शेर से ज्यादा ही उतरता है और उसके 200 रुपए तक लग चुके हैं।
4: भाई, इतनी अच्छी गाय है तो 10 रुपए अधिक हम दे देंगे। ये लो 100 रुपए, बाकी तुम्हारे आने पर मिल जाएंगे।
3: जी मालिक।
2: दरअसल हीरा सिंह के मन में उसकी प्यारी गाय सुंदरिया ही थी। सोचने लगा, यहाँ आएगी तो अच्छा चारा भी मिलेगा और मैं उसकी सेवा भी कर लूंगा। हीरा सिंह उसी दिन गांव चला गया। जैसे तैसे अपने बेटे जवाहर को समझाया और गाय लेकर दिल्ली आ गया। सेठ जी ने गाय को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। ऐसी स्वस्थ सुंदर गाय उन्होंने पहले ना देखी थी। दूसरे दिन सेठ जी ने पास के एक ग्वाले को बुलाया और गाय उसके सुपुर्द कर दी। हीरा सिंह का दिल भरा जा रहा था। उसने सेठ जी से कहा,
3: सेठ जी, गाय की नौकरी पर मुझे ही लगा दीजिए, चाहे पगार कम ही दीजिए।
4: ये नहीं हो सकता हीरा सिंह। भाई, हमें तुम जैसा दूसरा ईमानदार और मेहनती चौकीदार कहाँ मिलेगा? तुम्हें तो यहीं ड्योढ़ी पर ही रहना होगा।
2: ग्वाले ने सुंदरिया को ले जाने के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन गाय टस से मस नहीं हुई।

0: अपनी भोली आंखों से वो हीरा सिंह को ही देख रही थी, मानो कह रही थी, तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। हीरा सिंह ने गाय को थपथपाया, पुचकारा और बोल उठा,
1: मेरी प्यारी सुंदरिया, अब चली जाओ ना, मैं यही तो हूँ तुम्हारे पास, तुम चिंता ना करो, अरे मैं तुम्हें देखने आता रहूंगा मेरी प्यारी सुंदरिया।
0: अनमने मन से सुंदरिया चल दी। लेकिन अगले ही दिन कुछ विचित्र हुआ। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाया।
2: हीरा सिंह, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? आज गाय का 5 सेर दूध भी नहीं उतरा। तुम तो कहते थे कि 15 सेर से भी ज्यादा दूध मिलेगा।
1: सेठ जी, कल ही तो मैंने पूरा 15 सेर दूध धोकर आपको दिया था, भला मैं झूठ क्यों बोलने लगा?
2: ये बात तो है, लगता है कुछ गड़बड़ है। चलो कल फिर देखते हैं।
1: जी सेठ जी।
0: लेकिन दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सेठ जी को गुस्सा आ गया, बोले,
2: हीरा सिंह, तुमने सचमुच मुझे धोखा दिया है, गाय को ले जाओ और मेरे पैसे वापस करो।
1: लेकिन मालिक, पैसे तो मैं गांव भेज चुका हूँ और उसमें से काफी मकान की मरम्मत में खर्च हो गए, अब पैसे कहाँ से लौटाऊं?
2: तो ठीक है, पैसा मैं तुम्हारी पगार से काट लूंगा।
0: अब रोज रोज यही शिकायत आने लगी। कभी गाय दूध बहुत कम देती, कभी चारे को मुंह तक नहीं लगाती। हाँ, एक बात जरूर थी, जब हीरा सिंह उसे देखने जाता तो बहुत प्रसन्न हो जाती और चारा भी खा लेती। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हीरा सिंह को निहारती रहती, मानो कह रही हो, मुझे वहाँ क्यों भेज दिया। एक रात की बात है, हीरा सिंह अपने कमरे में सो रहा था कि तभी
1: सुंदरिया, तुम मेरी प्यारी सुंदरिया।
0: वो अपराधी भाव से उसे देख रही थी, मानो कह रही हो, क्षमा करना, मेरा वहाँ मन नहीं लगा, इसलिए रस्सी तोड़ कर आई हूँ, मुझे तो तुम्हारे संग ही रहना है। उस मूक गाय की आंखों में वेदना थी। हीरा सिंह भाव विभोर हो उठा। वो सुंदरिया के गले से लिपट कर तीर तक सिसकता रहा।
1: अब तू कहीं नहीं जाएगी, हम कहाँ चलेंगे? मैं अपराधी हूँ कि मैंने तुम्हें बेच दिया, लेकिन सुंदरिया, वो तो तुम्हारे भले के लिए ही तो था। लेकिन अब हम साथ रहेंगे। हाँ, अब मैं तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं करूंगा। मैं सुबह ही सेठ जी से बात करूंगा।
2: आओ हीरा सिंह, कुछ बात बनी? गाय कैसी?
1: सेठ जी, मैं गाय को आज ही गांव ले जाऊंगा।
2: लेकिन उसके लिए जो पैसे तुमने लिए हैं, उनका क्या होगा?
1: सेठ जी, मैं उसे चुकाने के लिए मुफ्त में आपकी चाकरी करने के लिए तैयार हूँ। रुपए जब चुकता हो जाएं, तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं भी छुट्टी कर लूंगा। सुंदरिया का दुख मुझसे नहीं देखा जाता सेठ जी।
0: इतना कहकर उसने गाय की डोर थाम ली और कहा,
1: सेठ जी, गाय को गांव छोड़कर मैं आपकी सेवा में फिर आ जाऊंगा और रुपए वसूल होने तक मैं आपके यहाँ काम करूंगा। नमस्ते।
0: हीरा सिंह ने गाय को पुचकारा, थपथपाया और चलने लगा। सेठ जी का मन भी भर आया था, कहने लगे,
2: हीरा सिंह, इस प्यारी गैया के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर

0: मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अरे तुमसे यहाँ मुफ्त में काम करवा कर क्या मुझे पाप नहीं लगेगा? मान लो कि मेरे रुपए भी वसूल हो गए। जाओ हीरा सिंह, जाओ।
1: जी सेठ जी।
0: खुशी से जाओ हीरा सिंह, और हाँ, सुंदरिया का खूब ख्याल रखना, और जब कभी भी समय मिले हमसे मिलने जरूर आना।
1: धन्यवाद सेठ जी।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुंदरिया। आशा है कि आपको जरूर ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है मेरा प्यारा दोस्त।
3: नमस्कार श्रोताओ, प्रेरक कहानियों की श्रृंखला में आपका स्वागत है।
4: ये कहानी है पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य मेघालय की। लेकिन कहानी सुनने से पहले आइए लेते हैं मेघालय राज्य की थोड़ी जानकारी। मेघालय शब्द दो शब्दों के मेल या संधि से बना है, मेघ और आलय।
3: मेघ यानी बादल और आलय यानी घर, तो मेघालय का अर्थ हुआ बादलों का घर। साथियों, प्राकृतिक सुंदरता में मेघालय का कोई सानी नहीं है।
4: जी हाँ साथियों, यहाँ जब तब अनायास ही उमड़ते बादल, ऊंचे ऊंचे पर्वत, कल कल करती नदियाँ और हरे भरे जंगल पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। गारो, खासी और जयंतिया यहाँ की मुख्य जनजातियाँ हैं।
3: मेघालय की राजधानी है शिलांग। ये कहानी शिलांग की है।
4: यूजीन लगभग 15 वर्ष का एक किशोर है। आज शिलांग शहर के पुराने बाजार में यूजीन चला जा रहा था। उसकी आंखें लगातार दुकानों के साइन बोर्ड्स पर ही टिक रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई खास दुकान खोज रहा हो।
5: यहीं कहीं तो थी वो दुकान, कहाँ है वो? अब ये तो रही वो फूल वालों की दुकान। उसके बाद हाँ, वो रही।
4: उसे वो दुकान मिल गई थी। साइन बोर्ड पर एक पिल्ले की सुंदर सी तस्वीर थी और उसके नीचे लिखा था पपीज फॉर सेल।
3: यूजीन को कुत्तों से बहुत लगाव था। उसकी बहुत इच्छा थी कि वो भी एक प्यारा सा कुत्ता पाले जो उसका दोस्त बन सके और उसके साथ खेल सके।
4: बात वास्तव में ये थी कि स्कूल में सहपाठी यूजीन के साथ रहने और खेलने से थोड़ा कतराते थे।
3: कुछ सोचकर वो दुकान में दाखिल हुआ।
5: हाँ, यहाँ से अंदर चलता हूँ। अरे वाह, कितनी सुंदर दुकान है, और ले प्यारे प्यारे पपीस भी हैं। आजा आजा।
4: उसने कई बार अपने घर में कहा था कि वो एक प्यारा सा पिल्ला पालना चाहता है, लेकिन उसकी सुनी नहीं गई थी। किसी पशु को पालना काफी जिम्मेदारी का काम होता है। एक पिल्ले को पालने के लिए यूजीन के माता पिता तैयार नहीं थे।
3: लेकिन अब यूजीन बड़ा हो गया है, अब वो खुद पिल्ले का ध्यान रख सकता है। इसीलिए आखिरकार वो मान ही गए। और आज
4: यूजीन पिल्ला खरीद सकता है अपनी पसंद का। यूजीन सीधा काउंटर पर दुकानदार के पास चला गया और बोला,
5: नमस्ते मैडम।
6: नमस्ते बेटा।
5: मेरा नाम यूजीन है, मैं एक

0: बिल्ला खरीदना चाहता हूँ, क्या आप मुझे उसका दाम बताएंगी?
1: देखो बेटा यूजीन, हमारे पास तो ढेर सारे पपीज हैं, सभी नस्ल के।
0: ओह,
1: लेकिन बेटा ये बताओ, क्या तुम सच में खरीदना चाहते हो?
0: जी बिल्कुल, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं?
1: बेटा बात ये है कि तुम्हारे साथ कोई बड़ा तो है नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस देखो और चले जाओ?
0: नहीं,
1: क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं, देखने की जिद करते हैं, सारे बिल्ले देखते हैं और अंत में लिए बिना ही चले जाते हैं। इससे हमारा समय बर्बाद होता है ना, तो
0: नहीं ऐसा नहीं है, मैं उन बच्चों की तरह नहीं हूँ, मैं सच में खरीदूंगा, आप उनके दाम बताइए तो सही।
1: यूजीन देखो बेटा, सबसे कम दाम के हमारे पास लगभग 2,000 रुपए के पिल्ले हैं, फिर 3,000 और ऐसे ही, मेरा मतलब नस्ल के हिसाब से और भी महंगे हैं।
0: अच्छा,
1: क्या तुम इतना पैसा दे पाओगे?
0: ओहो, अभी इस समय तो मेरे पास 1,500 रुपए ही हैं। अब ये तो मैं आपको अभी तुरंत दे सकता हूँ, बाकी पैसे आपको कल दे सकता हूँ। मैं पापा से बात कर चुका हूँ, वो मुझे मेरी पसंद का पिल्ला लेने के लिए कह रहे थे, आप मुझसे कल तक ले लीजिए।
1: बेटा ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना, समझो मेरी बात। वो क्या है कि अगर अभी तुम्हें पपी चाहिए तो तुम्हें पूरा पैसा भी अभी ही चुकाना होगा, समझे ना?
0: ठीक है मैडम, पर आप मुझे पपी दिखाइए तो सही, मैं आपको इसका मूल्य चुका दूंगा आज ही शाम तक। अब आया हूँ तो पसंद करके ही जाऊंगा, अभी 1,500 दूंगा और जब बाकी पैसे लाऊंगा तब मैं आपसे पिल्ला ले लूंगा।
1: ठीक है। शेल्बिलिन, शेल्बिलिन, अरे कहाँ हो भाई?
2: हाँ जी बताइए।
1: देखो सारे पपीज ले आओ, ग्राहक कब से खड़े हैं, ध्यान रखा करो।
2: हाँ हाँ अभी लाते हैं, बस एक मिनट।
3: थोड़ी ही देर में सामने एक छोटा सा दरवाजा खुला और 5-6 प्यारे प्यारे पिल्ले कूं कूं करते हुए सामने आए। वो ऐसे लग रहे थे मानो ऊन के गोले हों, सब के सब बहुत ही प्यारे लग रहे थे।
4: यूजीन ने देखा कि उनमें एक पिल्ला था जो उछल कूद नहीं मचा रहा था, उसके सामने के दोनों पांव तो काम कर रहे थे लेकिन पीछे के दोनों पांव घिसट रहे थे। वो धीरे धीरे घिसटता हुआ सबसे पीछे पीछे आ रहा था।
1: अरे शेल्बिलिन, तुमसे कितनी बार कहा है इसे मत लाया करो, तुम्हें ये छोटी सी बात समझ नहीं आती क्या? तुम फिर से इस पिल्ले को ले आए, हटाओ इसे।
2: ये तो बहुत शैतान है, पीछे पीछे आ ही जाता है, अभी ले जाता हूँ इसे, चलो शाबाश वापस चलो।
0: एक मिनट, अब इसे क्या हुआ, ये ऐसे क्यों चल रहा है? आजा इधर आ।
1: ये जन्म से ऐसा ही पैदा हुआ है, सही होता तो इसकी बहुत कीमत होती, अब तो बोझ ही है हमारे लिए।
0: मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, कितनी कीमत होगी इसकी?
1: हैं? अब अच्छा समझ गई बेटा, समझ गई, मुझसे मजाक कर रहे हो ना? अरे ये देखो, ये वाला कितना सुंदर है, महंगा तो है लेकिन दूर दूर से लोग आते हैं इस वाले पिल्ले को खरीदने के लिए।
0: नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, वो वाला कितने का है?
1: अरे बेटा कैसी बातें करते हो, ये बेकार है, अरे बिन पैर का पिल्ला, बहुत से लोग आते हैं इस दुकान में, हम तो इसे छुपाई देते हैं।
0: क्या?
1: वैसे भी ये भला किस काम का, कौन खरीदेगा इसे?
0: मैडम मैं खरीदूंगा इसे, मैं इसे ही खरीदूंगा।
1: मगर क्यों? तुम्हें पता है ये तुम्हारे साथ खेल नहीं पाएगा, तुम आखिर इसे क्यों खरीदना चाहते हो?
0: मुझे यही चाहिए।

0: देखो बेटा, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम अभी जोश जोश में ऐसा कह रहे हो। शायद इसकी हालत पर तुम्हें दया आ रही होगी, है ना?
1: नहीं।
0: लेकिन सोचो, कुछ ही दिनों में अगर ये बीमार हो गया तो तुम इसे सड़कों पर या कहीं और छोड़ दोगे। और देखो, अगर ऐसा हुआ तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा।
1: जी नहीं, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इसके साथ। मैं इसके साथ कुछ नहीं होने दूंगा। ये अपने इन्हीं कमजोर पैरों पर चलेगा। चलेगा ना मेरे साथ, बनेगा ना मेरा दोस्त। अल्ले।
0: अच्छा ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर इसे यूं ही ले जाओ।
1: यूं ही?
0: हाँ, अब इसकी भला क्या कीमत।
1: क्या मतलब? अगर इसकी टांगे खराब हैं, तो क्या इसकी कोई कीमत नहीं है?
0: अच्छा अच्छा, समझी समझी, स्वाभिमानी हो, मुफ्त में कुछ नहीं लोगे, अच्छी बात है। तो ऐसा करो, इसके तुम बस 50 रुपए दे दो, खुश?
1: 50 रुपए क्यों? ये तो इसका अपमान हुआ ना। इस नस्ल के दूसरे पिल्लों की जितनी कीमत है वो ही इसकी भी है। मैं आपको इसके पूरे पैसे दूंगा।
0: पर बेटा ये तो
1: बताइए ना, इसकी नस्ल की कितनी कीमत है?
0: बहुत महंगी है, अब 2000 रुपए। मेरा मतलब है कि
1: तो यही इसकी कीमत भी है। अब ये रहे 1500 रुपए।
0: अब
1: और अब ये मेरा हुआ, मेरा दोस्त, है ना? है ना मेरा दोस्त तू, यूजीन का दोस्त। तुम्हें शाम तक ले जाऊंगा दोस्त।
0: देखो बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं और जानवरों के लिए तुम्हारे इस प्यार का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन बेटा क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुमने इस पपी में ऐसा क्या देखा कि तुमने इसको ही चुना, वो भी इतनी कीमत देकर? आखिर क्यों बेटा?
1: आप पूछते हैं क्यों? ये देखिए मैडम, ये देखिए।
2: यूजीन नीचे झुका और उसने धीरे धीरे अपनी पैंट ऊपर उठाई। दुकानदार ने देखा यूजीन का बायां पांव घुटने से कटा हुआ था, नीचे का आधा पैर कृत्रिम था, वहां धातु का पांव लगा हुआ था जिसके सहारे वो थोड़ा मुश्किल से लेकिन बिना सहारे के चल सकता था।
0: अरे बेटा, ये तुम्हारा?
1: जी मैडम, आधा पैर नहीं है मेरा। अब बताएं मेरी क्या कीमत है आप जैसे लोगों के बीच? मैं भी इस पपी की तरह कूद नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, तो हो गया ना मैं भी बेकार बोझ।
0: अरे अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें करते हो, वो तो मैं बस
1: मैं भी मौका मिलते ही सबसे खुलना मिलना चाहता हूँ, लेकिन शायद मेरी ये कटी टांग ने मुझे सबके बराबर नहीं होने दिया। और 5 साल की उम्र से जानता हूँ मेरे साथ कोई नहीं खेलता, ये सब मैं जानता हूँ, ये सब मुझे पता है
0: बेटा।
1: इसलिए मुझे लगता है कि ये पपी मुझे मेरी कटी टांग से नहीं पहचानेगा, मुझे मेरी दोस्ती और मेरे प्यार से पहचानेगा। मैं नहीं चाहता ये अभी से मेरी तरह आजादी को, प्यार को तरसे। आज से, अभी से ये मेरा हुआ। आजा मेरा दोस्त, आजा।
0: यूजीन बेटा, इस पपी को तुमसे बेहतर भला कौन समझेगा, और शायद ये किसी और के साथ उतना प्यार भी ना पा सके जो इसका अधिकार है। इसे तुम्हें सौंपकर मैं भी निश्चिंत रहूंगी। ये लो, ये अब तुम्हारा हुआ, लो।
1: आजा।
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरा प्यारा दोस्त।

0: अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

कंप्लीट कर सारे जदि आमको शुणुंत रास्त जाऊँगी निज सेफ्टी प्रति ध्यान दौर वर्षा जनित कारण विभिन्न स्थान में झिपझिप वर्षा किसी स्थान प्रबल वर्षा देखा मिली राज्यर विभिन्न स्थान वर्षार प्रकोप आपण को अनुरोध कि घर बाहर समय वर्षा प्रति सचेतन रही निज सहित रेन सेफ्टी छता एवं बरसाती सांगरे धरि बाहरंतु निज स्वास्थ्य प्रति जत्नवान हुंतु निज लोकमानंकु मध्य सचेतन करंतु तबे बंधु वर्तमान दिन 3:30 मिनिट ही सरीची आरंभ करुछु कार्यक्रम मो देशा

फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो हे, हम सारे हैं भारतवासी सब।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, ट्यून कर चंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को सो चली छी मोदेसा। तबे बंधु, भारतीय हेबार अर्थ केवल ई देशरे जन्म नेवा नुहे, बरं संविधानर मूल्यबोध को सम्मान करिबा, समस्त धर्म और संप्रदाय को समान आदर करिबा, देशर एकता एवं अखंडता को सुरक्षित रखिबा एवं समाजर उन्नति रे निजर अवदान रखिबा। जने जने सचेतन नागरिक हिसाब से आम कर्तव्य आईन को सम्मान करिबा, परिवेश को सुरक्षा देवा, स्वच्छता को बजाय रखिबा एवं देशर समस्त संपत्ति को निजर संपत्ति परि सुरक्षा करिबा। ए सबु आमर भारतीय कहिबा पछरे निहाती गोटे अंतर्निहित बा कहिपरिबे लुकायित भावरे ए कर्तव्य गुडीकु आमकु पालन करिबा पई पडिबो। आम नागरिक कहिदेले केवल जथेष्ट नुहे, नागरिक हेबार कर्तव्यकु मध्य आमकु पालन करी देश प्रति निज देश प्रेम देखाइबाकु पडिबो।

0: हे प्रभु, ए मासरे भी एते इलेक्ट्रिक बिल केमिति देबी?
1: अरे राजू भाई, पीएम सूर्य घर योजना रो यूएलए मॉडल थाउ थाउ तोरा एते चिंता काहे कि जे? मु तो मो घरे सोलार लगाई देलिनी, बिजली बिल टेंशन रो मु पूरा मुक्ति।
0: सतरे भाई?
1: हाँ भाई, मात्र 1875 टंका रे। पुणी एथिरे वार्षिक 5000 टंका पर्यंत बिजली बिल रे संचय हेबो, ता सह 5 वर्ष जाए मेंटेनेंस खर्च भी नाही।
2: आज्ञा हाँ, आज ही अधिक सूचना पाई निकटस्थ विद्युत कार्यालय अथवा 1800345718 रे जोगाजोग करंतु।
3: ओडिशा सरकारंक समयबाय विभाग तरफरु राज्यर समस्त कृषक भाई भौनी मानंकु सूचित करा जाउछि जे चलित 2026 मसिया खरीफ ऋतु पई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे निज फसल धान मका कपा अदा मांडिया चीनाबादाम हलदी ओ हरड़ चाषर बीमा पंजीकरण कराइ नियंतु। भाग चाषी ऋणी ओ अणऋणी चाषी समस्ते निज फसलर बीमा पंजीकरण निर्धारित तारीख 31 जुलाई सुधा निकटस्थ कृषि समवाय समिति जथा पैक्स लैम्प बैंक शाखा किंबा जनसेवा केन्द्र रे कराई परिबे। चाषी पिछा 5 एकर जमीर फसल बीमा पंजीकरण संपूर्ण देयमुक्त अटे। प्लॉट पिछा केवल 1 टंका दबाकु पड़िबो। अधिक विवरणी पई निकटस्थ कृषि समवाय समिति जेकोनोसी बैंक शाखा किंबा कृषि और समवाय अधिकारी को जोगाजोग करंतु।

जी हाँ बंधु, आरंभ थिले शेष तो अच्छी तेबे शेषरु मन पड़ला वर्तमान तो समय हिछि देवी प्रसाद को एबे आपन को विदाय नवापाई पड़िबो पुणी आउटे नुआ दिन रे आपन को सहित ढेर सारा कथा वापाई देवी प्रसाद पुणी ढेर सारा गीत नहीं आपन को पाकु को आसीबो से पर्यंत विदाय दियंतु एवं समस्त सुरक्षित रुहंतु नीचे सुरक्षित रहिबा सहित निज लोक मानकु भल पाइबा दियंतु सेमान को सहित निज जीवन को खुशी रे भरी दियंतु। जय जगन्नाथ।

0: गुड इवनिंग किए कहते कौन कहते
1: बरदास भगवत पुस्तकरा कटक्रु कौली
0: आज्ञा कौन सब अमूल्य जिनस जीवन रे
1: मोर तो निश्चित भाव कही मोर अमूल्य जिन मोर पिता और माता रिटायर कल 2011 मसीह अवसर प्राप्त विद्यालय परिदर्शक हिसाब से रिटायर कली मोर पिता माता बर्थडे जिते बहुत मोर आखिर लोभ है मोर अमूल्य संपद अच्छे पिता और माता
0: बहुत सुंदर थैंक यू सो मच कॉल करी मते मते देले नंबर 0671233 रे आपण मध्ये कॉल करी शेयर करी परिवे आपणक जीवन रो सबठारो अमूल्य जिंस विषय रे हेलो
2: मैडम नमस्कार
0: आपणक रेडियो रो वॉल्यूम कम कर दियो तो हेलो
2: मैडम नमस्कार
0: आज्ञा के कोथले कोडू कोथले
2: मो अशोक सर कोथले छपिए
0: आज्ञा कोन आपन को जीवन रे सबठार अमूल्य जिंस बोले भावंती
2: प्रथम हले मो बाटा बहु तापर हले मो बाटा बहु चली हलेनी तापर मो तेले पुरी जाईतले पुरी रे जो प्रथम जाई श्रीमंदिर रे जो अबड़ा खाइतले एटा मोर सब कुछ अमूल्य छ
0: अरे वाह बहुत बढ़िया कथा थैंक यू कॉल करले मते मते देले
2: Don't.

सखियां सीता जी को गौरी पूजन के लिए पुष्प वाटिका में ले आईं, जहां श्री राम को सीता के प्रथम दर्शन हुए। सीता ने भी श्री राम के श्यामल मनोहारी रूप को देखा कि तभी दोनों भाई वाटिका में उनकी आंखों से ओझल हो गए। वो चकित होकर चारों ओर देखने लगी कि राजकुमार क्षण भर में ही कहां लोप हो गए। उसी समय दोनों भाई लता कुंज में से ऐसे प्रकट हुए जैसे बादलों का आवरण हटाकर चांद निकल आता है। दोनों भाइयों के शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभा पा रही हैं। कानों में सुंदर आभूषण, टेढ़ी भ्रिकुटी और घूंघर वाले बाल, रत्नारी आंखों और मुस्कान की शोभा मन को सहज ही मोह लेती है। ये मनोहारी दृश्य देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। तभी एक सखी ने सीता जी से ठिठोली की, पार्वती का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को ही जी भर कर क्यों नहीं देख लेती। सिर से पैर तक श्री राम का सुंदर रूप देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके सीता जी को अवसाद हो आया। शिव जी के धनुष की कठोरता स्मरण कर हृदय में श्री राम की मूर्ति बसाए बिसूरती सीता सखियों समेत पार्वती पूजन को चल पड़ी।

0: सोमवासरे संसद भवनं प्रति आन्दोलनं कुर्वत्सु प्रदर्शनकारिषु आरक्षकैः कृतायाः अत्यधिक बलप्रयोगस्य आशंकायाः प्रकरणे देहली उच्चन्यायालयः केन्द्रसर्वकारात् देहली आरक्षक विभागाच्च स्पष्टीकरणम् आहूतवान्। फिलीपींस देशस्य मनीला नगरे समायोजिते क्वाड मंचस्य वैदेशिक मंत्रिणाम उपवेशने मंत्रिभिः मुक्त उन्मुक्त समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्राय स्वकीया प्रतिबद्धता पुनरावर्तिता। असमराज्ये भीषण जलप्लावेन स्थितिः अद्यापि अत्यन्तं गभीरा वर्तते, यत्र जलौघे मृतकानां आहत्य संख्या संवर्ध्य 31 सम्प्राप्ता। अपि च चीन ओपन बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायाम् अद्यापराह्णे वारद्वयस्य ओलंपिक पदक विजेत्री पीवी सिंधुः स्वस्यैव देशस्य उन्नति हुड्डां पराजित्य द्वितीय चक्रं प्राविशत्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणम् अथ च छात्राणां विरोध प्रदर्शनम् समेत्य विभिन्न प्रकरणेषु विपक्षिणां तृतीय दिवसेपि सदस्यानां अविरत कोलाहलत्वेन संसदः उभय सदनयोः कार्याचरणं स्थगितम्। अपराह्णे द्विवादने द्वितीय स्थगनात् परं यदा लोकसभायाः कार्याचरणं पुनरारब्धं तदा विक्षेपेण नीट प्रकरणमधिकृत्य उच्चैः कोलाहलो विहितः। अत्रांतरे सदनेन तृणमूल कांग्रेस दलस्य सांसदः कल्याण बैनर्जी इत्यस्य वर्षाकालीन सत्रस्य शेषावधेः निलंबन प्रस्तावोऽपि पारितः। पीठासीनः कृष्णा प्रसाद टेनेटी न्यगादीत् यत् कल्याण बैनर्जी इत्यसौ महिला सांसदानां विरुद्धं आपत्तियुक्ताम् असंसदीय टिप्पणीं विहितवान्। घटनेयम् आपत्तियुक्ता सदनस्य मर्यादायाः विरुद्धा च इत्यपि सः प्रावोचत्। संसदीय कार्य राज्यमन्त्रिणा अर्जुन राम मेघवालेन एषः प्रस्तावः उपस्थापितः, यश्च ध्वनिमतेन पारितः। निरन्तर कोलाहलेन पीठासीनाधिकारिणा लोकसभायाः कार्याचरणम् आगामि दिनं यावत् अपवारितम्। राज्यसभायामपि एतादृशः एव दृश्यः दृष्टिम् अगात्। अपराह्णे त्रिवादने तृतीय स्थगनात् परं यदा उच्च सदनं समवेतं तदा विपक्षिदलानि नीट विषये अन्य प्रकरणेषु च विरोधं प्रादर्शयन्। उपसभापतिः हरिवंशः अवदत् यत् सर्वकारः नीट विषये चर्चायै सज्जः अस्ति, विपक्षेण च सदन संचालने सहयोगः करणीयः। उच्चसदने भाषमाणः संसदीय कार्यमन्त्री किरण रिजिजुः कांग्रेसदलेन नवीनान् पक्षाश्रयानारोप्य सदने चर्चायां विघ्नोत्पादनाय प्रत्याक्षिपत। अविरत कोलाहलस्य मध्ये उपसभापतिना राज्यसभायाः कार्याचरणमपि आगामि दिनं यावत् स्थगितम्। इतः प्राक् संसदीय कार्यमन्त्री किरण रिजिजु उदघोषयत् यत् सर्वकारः नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग विषये सर्वविधां विचार विनिमयं कर्तुं पूर्णतया सन्नद्धो वर्तते। राष्ट्रस्य यूनां भविष्यं मनसि निधाय रिजिजु वर्यः सबलं आग्रहम् अकरोत् यत् सर्वकारः सर्वानपि पक्षान् समेत्य एकां उच्चस्तरीय चर्चाम् इच्छति।
1: सरकार नी पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूँ कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: दिल्ली उच्च न्यायालयः सोमवासरे संसद भवनं प्रति गच्छत्सु प्रदर्शनकारिषु आरक्षकैः कृतायाः अत्यधिक बलप्रयोगस्य आशंकायाः प्रकरणे केन्द्रीय सर्वकारात् दिल्ली आरक्षक विभागाच्च प्रत्युत्तरं याचितवान्। मुख्य न्यायाधीशस्य डीके उपाध्यायस्य च तथा न्यायाधीशस्य तेजस कारिया महोदयस्य न्यायपीठेन आरक्षक कार्याचरणात् सम्बद्धानि सर्वाणि प्रपत्राणि सीसीटीवी चित्राणि च सुरक्षितानि स्थापयितुं निर्देशो प्रख्यापितः। अस्य प्रकरणस्य अग्रिमं श्रवणम् अस्मिन्नेव वर्षे सितम्बर मासस्य 11 दिनांके भविता। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः अद्य फिलीपींस देशस्य राजधान्यां मनीलायां क्वाड विदेशमंत्रिणां सम्मेलने भागम् अगृह्णात्। एकस्मिन् संयुक्त वक्तव्ये भारत जापान ऑस्ट्रेलिया अमेरिका देशाः मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्रस्य सुदृढीकरणाय सहैव आसियान संघस्य एकतायै स्वस्य अविचल समर्थनं पुनः प्रत्यपादयन्। उपवेशनावधौ तैः हिंद

मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

पुरी ठारे श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर विश्व प्रसिद्ध बाहुड़ा यात्रार प्रत्यक्षदर्शी धारा बिवरणी आकाशवाणी प्रचारित हेबो जुलाई 24 तारीख शुक्रवार सकाळ 8:30 रु रथ टणा शेष हेबा पर्यंत ओडिसारो समस्त आकाशवाणी केन्द्र एवं एफएम रेनबो रे एही धारा बिवरणी एक संगरे प्रचारित हेबो। जगन्नाथ संस्कृति ओ परंपरार विशिष्ट भाष्यकार मानंक द्वारा धारा बिवरणी प्रदान करा जीवो।

ट्यून करी शुंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिलदार संध्या असर रे परवर्ती शुभेच्छा वार्ता पठी छंती आलोक चंद्र जेना जायलो कटक रु लेखु छंती मैम गुड इवनिंग शरीर दुर्गंध दूर करे साबुन मन दुर्गंध दूर करे काम क्रोध लोभ मोह माया घृणा आपण जोटा सब लिखी छंती मनर माने दुर्गंध दूर तो करेनी तो बढ़ई दबा ना काम क्रोध रही आई थिंक किसी वार्ड स्कीप ओके आपको वेरी गुड इवनिंग थैंक यू सो मच आप मेसेज पाई

और अब एफएम मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट पेपर लीक सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है। दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रखने की घोषणा की है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज सुविधा जारी रहेगी। लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देशभर में 162 वंदे भारत रेल सेवाएं संचालित हो रही हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय ने गुजरात के अंकलेश्वर में एक आवासीय परिसर से संचालित मेफेड्रोन के गुप्त संयंत्र का भांडा फोड़ किया। अवैध मादक पदार्थ के निर्माण और तस्करी नेटवर्क में शामिल 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार आईएनएस कादम्बा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल किया। कश्मीर में आज अनंतनाग जिले में लाल चौक इलाके में आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी बलिदान हो गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के

0: Vani, Akash Vani.
1: Welcome. The Commonwealth Games.
2: नमस्कार। लंबी अनिश्चितता और आयोजन पर मंडराते बादल के बाद आखिरकार वो लम्हा आ गया है जब खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स में अदद एक पदक के लिए अपने शरीर के खून का कतरा कतरा झोंक देंगे और फिर टप टप टपकते पसीने से सींच कर एक मेडल पैदा करेंगे। इस पदक की चमक विजेताओं को जीवन में कभी नहीं भुलाने वाली खुशी देगी। बर्मिंघम से चार साल बाद खेलों का कारवां स्कॉटलैंड के ग्लासगो पहुंचा है। हालांकि इस बार चार साल का ये अंतराल कुछ ज्यादा ही मुश्किलों से भरा रहा है। दरअसल कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य को करनी थी, लेकिन दो साल पहले विक्टोरिया ने लागत बढ़ने और फंड की कमी का तर्क देकर आयोजन से अपना हाथ खींच लिया। इससे कॉमनवेल्थ फेडरेशन मुश्किल में पड़ गया। आयोजन से दो साल पहले नए मेजबान की तलाश का काम आसान नहीं था। काफी प्रयास के बाद आखिरकार ग्लासगो को मेजबानी सौंपी गई, लेकिन यहां भी एक अड़चन आ गई। ग्लासगो ने भी कम बजट की बात कहकर ये शर्त रख दी कि वह सिर्फ उन खेलों का ही आयोजन कर सकता है जिनके लिए वेन्यू उनके पास पहले से ही मौजूद है। ऐसे में खेलों की संख्या में कटौती की गई। बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के 19 खेलों के मुकाबले ग्लासगो में ये संख्या सिर्फ 10 रह गई है। जो खेल स्पर्धाएं ग्लासगो में होने जा रही हैं उनमें एथलेटिक्स, स्विमिंग, ट्रैक साइकिलिंग, वेट लिफ्टिंग, 3x3 बास्केटबॉल, लॉन बॉल्स, नेटबॉल, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, जूडो और बॉक्सिंग शामिल हैं। दूसरी तरफ जिन 9 खेलों को हटाया गया है उनमें रेसलिंग, बैडमिंटन, हॉकी, स्क्वाश, क्रिकेट, टेबल टेनिस, बीच वॉलीबॉल और रग्बी सेवन शामिल हैं। इस फैसले का बड़ा असर भारत की पदक की संभावनाओं पर भी पड़ा है। हम आपको बता दें कि बर्मिंघम में भारत ने बीच वॉलीबॉल और रग्बी सेवन को छोड़कर बाकी सभी खेलों में हिस्सा लिया और 61 मेडल्स भी जीते थे। भारतीय दल को बैडमिंटन में 2, क्रिकेट में 1, स्क्वाश में 2, टेबल टेनिस में 7 और रेसलिंग में 12 मेडल मिले थे। ऐसे हालात में पदकों की संख्या का कम होना तय है। अब उन खेलों की बात करें जो इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा हैं और जहां भारत के लिए पदक की बेहतर संभावना है। भारत को बर्मिंघम में बॉक्सिंग में 7, जूडो में 3, वेटलिफ्टिंग में 10, एथलेटिक्स में 8, लॉन बॉल में 2 और पैरा पावर लिफ्टिंग में 1 मेडल मिला था और कुल 31 मेडल भारत ने जीते थे। इस बार भी पदकों की संख्या इसी के आसपास रहने की उम्मीद है, क्योंकि स्विमिंग, ट्रैक साइकिलिंग, 3x3 बास्केटबॉल, नेटबॉल और आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में हमारी दावेदारी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। इस बार के 125 खिलाड़ियों का भारतीय दल मेडल के लिए अपनी सारी ताकत झोंक देगा। इस दल में 77 पुरुष

0: और 48 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। सबसे बड़ा 32 सदस्यों का दल इस बार एथलेटिक्स में पदक की दावेदारी के साथ उतरेगा। इसके बाद मुक्केबाजी और जूडो में 14-14 और वेटलिफ्टिंग में 12 खिलाड़ियों का दल हिस्सा लेगा। हम आपको ये भी बता दें कि ओलंपिक मेडलिस्ट वेटलिफ्टर मीराबाई चानू और बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन और भारत की संभावनाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय खेल प्राधिकरण साई की प्रतिनिधि और वरिष्ठ खेल पत्रकार हिमिका चौधरी। हिमिका, आपका स्वागत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: हिमिका। आखिर तमाम हाना के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू होने जा रहा है, लेकिन पिछले आयोजन के मुकाबले इस बार 19 की जगह सिर्फ 10 खेल होंगे, इसका क्या असर इन खेलों के आयोजन पर पड़ सकता है?
1: पिछली बार 61 मेडल्स हमको मिले थे, इस बार उम्मीद है कि एटलीस्ट 32 या 33 मेडल्स 33 मेडल्स हम लेके आए। जैसा कि सबको पता है अब, और आपने भी इसका जिक्र किया, कि जो हमारे मेन मेडल डिसिप्लिन्स हैं, जैसे बैडमिंटन है, जैसे बॉक्सिंग है, जिसमें हम लोग हमेशा से स्ट्रांग रहे हैं, इस वाले ग्लासगो CWG में नहीं है, तो उम्मीद ये है कि जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें तो हम जरूर अच्छा करेंगे, पर हाँ ओवरऑल एक इम्पैक्ट तो जरूर रहेगा मेडल टैली में।
0: जी, और भारत के खिलाड़ियों के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर हम बात करते हैं तो ये गेम्स न सिर्फ पदक जीतकर मनोबल बढ़ाने के लिए बल्कि उसी साल होने वाले एशियन गेम्स और एक साल बाद होने वाले ओलंपिक की तैयारियों के लिए भी अच्छा मंच प्रदान करता रहा है। इस बार कुश्ती, शूटिंग, हॉकी, बैडमिंटन, आर्चरी का न होना क्या एशियाई खेलों और ओलंपिक्स में भी भारत की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है?
1: आपने बिल्कुल सही कहा। तो उस हिसाब से तो जो एथलीट जाते हैं, और ये हम सबको पता है कि सिर्फ प्रैक्टिस करना, ट्रेनिंग करना ही इनफ नहीं होता, एक एथलीट के लिए सबसे जरूरी होता है कंपटीशन। एक क्लासिक एग्जांपल है नीरज चोपड़ा का, कि वो जिस एंगल में भाला पहले फेंकते थे, फिर उनको पता चला कि उस एंगल में वो अचीव नहीं कर पा रहे, उनका वो जो 90 जो द ड्रीम मार्क है, तो उन्होंने उस चीज को चेंज किया। तो डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन हम कह सकते हैं कि जो खिलाड़ी नहीं जा पा रहे हैं CWG पर, एशियन गेम्स में जाएंगे और आगे ओलंपिक में जाएंगे एलए में, उनके लिए इट्स डेफिनेटली अ लॉस्ट चांस। और ये जैसा आपने कहा, खिलाड़ी का मनोबल और साथ में खिलाड़ी का एक एक्सपीरियंस रहता है, वो उनको इस बार नहीं मिलेगा। पर मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगी कि अभी इंडिया में हम लोग इतने सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू आउट द ईयर। आप अगर देखें तो सिर्फ इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में हम जा रहे हैं, सिर्फ ये नहीं, जितने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स आज की तारीख में हम इंडिया में होस्ट कर रहे हैं, कि आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 2025-26 में हमने 36 कॉम्पिटिशन्स जो है इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स हमने इंडिया में होस्ट किया। अभी 26 पूरा खत्म भी नहीं हुआ है, हम और 11 जो है इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स इंडिया में हम होस्ट करेंगे। अगले साल 19 ऑलरेडी पाइपलाइन में है। ये सारे वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल के कॉम्पिटिशन्स हैं, अच्छे स्तर के कॉम्पिटिशन्स हैं, तो खिलाड़ियों को कॉम्पिटिशन्स मिलते रहे हैं, आगे भी मिलेंगे। पर वो जो CWG से एशियन गेम्स जाने का एक जो वो आप कह सकते हैं चार्म होता है, वो डेफिनेटली नहीं मिलेगा, और कुछ कुछ खेलों में ये लॉस जरूर रहेगा।
0: हिमिका, जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा नहीं है, जिसमें हम ढेर सारे पदक भी जीतते रहे हैं, लेकिन जो खेल इस बार शामिल किए गए हैं उसके लिए हमारे खिलाड़ियों ने तैयारियां कैसी की हैं, पदक की कितनी बेहतर संभावनाएं आपको दिखाई दे रही हैं?
1: देखिए, हमेशा कोशिश यही होता है, वो चाहे खिलाड़ियों का हो, वो चाहे सरकार का हो, जो एक सपोर्ट सिस्टम, एक इकोसिस्टम स्पोर्ट्स का तैयार किया है, ग्रास रूट से लेकर एलीट एथलीट तक सपोर्ट देने का, हमेशा एफर्ट यही रहता है कि कंपटीशन जिस स्तर का भी हो, जैसे कि इस बार ट्रंकेटेड है, पर एफर्ट में कोई कमी नहीं है, ना एथलीट के तरफ से ना सपोर्ट के तरफ से। तो मुझे लगता है कि हम लोग डेफिनेटली पिछले बार के मुकाबले वो हर डिसिप्लिन जिसमें हम इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं कम मेडल तो नहीं लाएंगे, क्योंकि पिछले पूरी CWG साइकिल में, और व्हेन आई से CWG साइकिल, चार साल का साइकिल होता है, उन चार सालों में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में जब हमारे एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया, मुझे कहते हुए खुशी है कि एटलीस्ट हर एक इन डिसिप्लिन्स में, एथलेटिक्स खास करके, क्योंकि उसमें हम लोगों की संभावनाएं काफी ज्यादा है, हम सब जानते हैं कि सारी नजरें टिकी हुई है नीरज चोपड़ा पे, तो नीरज चोपड़ा तो चलिए मैंने वो एक्सपेक्टेड है, वो होने ही वाला है, पर बाकी भी जैसे आप मुरली श्रीशंकर ले लीजिए, तेजस्विन ले लीजिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग। तो पिछले कई महीनों में ये सब इंटरनेशनल

0: ट्रेन कर रहे हैं. इंडिया में तो ट्रेनिंग लेते ही है, साई बेंगलुरु में भी वो ट्रेनिंग लेते हैं, एनएसएनआईएस पटियाला में भी ट्रेनिंग करते हैं, बट ये नजर में रखते हुए कि वो जो इंटरनेशनल खिलाड़ी है उनके स्तर पे उनके जैसा उनको ट्रेनिंग का मौका मिले, फॉरेन कोचेस का सपोर्ट मिले. तो ऑलरेडी जैसे एथलेटिक्स वाले पोलैंड में है, स्पाला में, साइकिलिंग के बच्चे है फ्रांस में, ऑलरेडी वो लोग वहां पे पहुंच चुके हैं, जिम्नास्टिक्स के बच्चे है वो ऑलरेडी यूके पहुंच चुके हैं और वहीं पे ट्रेनिंग कर रहे हैं. ऐसे और बाकी डिसिप्लिन का भी वही है, 20 से ज्यादा फॉरेन कोचेस इंडियन कोचेस के साथ लगे हुए हैं. इंटरनेशनल जो कोचेस है उनमें से बहुत सारे लोग ऑलरेडी ओलंपिक चैंपियन तैयार कर चुके हैं, बहुत सारे कोचेस खुद ऑलरेडी ओलंपियंस रह चुके हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो जिस तरह के टेक्निक इंट्रोड्यूस करते हैं उससे हमारे एथलीट्स को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है. और सब कुछ मिला के मतलब वेदर इंटरनेशनल एक्सपोजर हो, फॉरेन कोचेस हो, या हमारे देश में जो साई सेंटर्स और एकेडमीज में वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, सब मिला के तैयारी एकदम 100% से ज्यादा है. और इसीलिए उम्मीद ये है कि पिछली बार जितना मेडल इन सब डिसिप्लिन में हमने जीता था एटलीस्ट उतना या उससे ज्यादा ही मेडल इस बार हम लेके आएंगे.
1: जैसा कि हमने बताया कि इस बार एथलेटिक्स में भारत का सबसे बड़ा दल भाग लेने जा रहा है. ट्रैक इवेंट में पुरुष वर्ग में पदक की एक बड़ी उम्मीद राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी गुरिंदर वीर सिंह 100 मीटर में हिस्सा लेंगे. हम आपको बता दें कि गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर के बीच 100 मीटर स्प्रिंट में हाल के दिनों में कमाल की प्रतिस्पर्धा रही है. हालांकि गुरिंदर वीर सिंह वर्तमान में 10.09 सेकंड के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ देश के सबसे तेज धावक हैं. उधर अनिमेश कुजूर ने जर्मनी में 10.14 सेकंड का समय निकालकर विदेशी धरती पर सबसे तेज भारतीय होने का रिकॉर्ड बनाया है. हालांकि ग्लासगो में भारत की तरफ से 100 मीटर दौड़ में भाग लेने का मौका गुरिंदर वीर सिंह को मिलने वाला है. उधर 200 मीटर दौड़ में भारत का प्रतिनिधित्व सबसे तेज 20.32 सेकंड का समय रखने वाले अनिमेश कुजूर करेंगे. विशाल टीके की दावेदारी 400 मीटर दौड़ मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले और रमेश का दावा 400 मीटर मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले में होगी. गुलवीर सिंह 5000 मीटर और 10000 मीटर, तेजस शिर से 110 मीटर हर्डल, यशस पलाक्ष 400 मीटर हर्डल और संतोष कुमार तमिल रासन 400 मीटर हर्डल में भाग लेंगे. ट्रैक विमेन्स कैटेगरी में रशदीप कौर 400 मीटर मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले, नीरू पाठक 400 मीटर मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले, अंसा बाबू 400 मीटर मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले, पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टीपल चेज 5000 मीटर, प्रियंका गोस्वामी 10000 मीटर वॉक, रवीना गायकवाड़ 10000 मीटर वॉक में शामिल हैं. उधर फील्ड मेंस कैटेगरी की बात करें तो देव मीणा और कुलदीप कुमार पोल वॉल्ट में सबसे बड़ी उम्मीद होंगे. सर्वेश अनिल कुशारे और आदर्श राम जे हाई जंप, तेजस्विन शंकर हाई जंप, डेकाथलान, मुरली शिशंकर और लोकेश सत्यनाथन लॉन्ग जंप, प्रवीण चित्रावेल और सिल्वा प्रभु ट्रिपल जंप, समरदीप सिंह गिल और तजिंदर पाल सिंह तूर शॉटपुट, नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह जैवलिन थ्रो में भारत की बड़ी उम्मीद होंगे. फील्ड वीमेन्स कैटेगरी में पूजा सिंह हाई जंप, मनप्रीत कौर शॉटपुट, सीमा कालीरमन और निधि रानी डिस्कस थ्रो में भारत की चुनौती की अगुवाई करेंगी. वैसे अगर दोहा डायमंड लीग में चौथे नंबर पर रहे नीरज की बात करें तो वो कॉमनवेल्थ गेम्स में अपनी संभावनाओं को लेकर काफी उम्मीद रखते हैं.
2: नहीं, मैं काफी खुश हूँ अपने प्रदर्शन से क्योंकि मैं इंजरी से आ रहा था और काफी टाइम बाद मैं कंपटीशन खेल रहा, तो मैं काफी खुश हूँ अपनी परफॉर्मेंस से. और ये इस साल का पहला कंपटीशन था और अभी तो पूरा सीजन बाकी है, तो आशा है कि और अच्छी थ्रो देखने को मिलेगी.
1: भारत का सबसे बड़ा दल एथलेटिक्स में ग्लासगो जा रहा है, ऐसे में भारत के लिए पदकों की वास्तविक तौर पर कितनी बेहतर संभावना है?
0: देखिए, एक्सपेक्टेशन पिछली बार से कुछ कम नहीं है. एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा इस बार एथलेटिक्स से ही है और जैसा कि आपने कहा कि बड़ी संख्या में कंटिंजेंट जा रही है, पर हम ये भी याद रखें कि एथलेटिक्स में भी सारी डिसिप्लिन्स नहीं है, पर जो डिसिप्लिन्स में भारत स्ट्रांग है जैसे जैवलिन हो गया, ट्रैक एंड फील्ड, ये सारे हमारे जो जंप्स है, क्योंकि वो सब है इस बार के CWG में, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि पिछली बार का जो नंबर था उसको शायद हम कुछ एक या दो मेडल से क्रॉस कर जाए इस बार. एथलेटिक्स के लिए पिछले सीजन में ही और कुछ लास्ट एक डेढ़ महीने की बात होगी, टोटल 26 नेशनल रिकॉर्ड टूटा है सिर्फ एथलेटिक्स में. तो अभी एथलेटिक्स में हमारा जो प्रदर्शन है वो बहुत ही, ये हम कह सकते हैं कि परहैप्स द बेस्ट इन द लास्ट फ्यू कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स. अभी इस टाइम पे हमारा जिस तरह का बेंच स्ट्रेंथ है, हमारा जिस तरह का प्रेपरेशन है, क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ

0: हेल्थ बहुत क्रिटिकल होता है, ये हम सबको पता है. तो इस बार क्योंकि ये यंग एथलीट्स है जो बहुत प्रिपेयर्ड है, बहुत ड्रिवन है, एक भूख है उनमें, एक हंगर है, क्योंकि उनको भी प्रूव करना है बहुत कुछ.
1: एथलेटिक्स के बाद जिस खेल से भारत को सबसे अधिक उम्मीद है उसमें बॉक्सिंग सबसे ऊपर है. इसमें पुरुष वर्ग में 55 किलोग्राम में जादूमणि सिंह, 60 किलोग्राम में सचिन सिवाच, 65 किलोग्राम में आदित्य प्रताप सिंह, 70 किलोग्राम में सुमित कुंडू, 80 किलोग्राम में अंकुश, 90 किलोग्राम में कपिल पोखरिया और 90 से अधिक किलोग्राम भार वर्ग में नरेंद्र बेरवाल की चुनौती होगी. महिला वर्ग के 51 किलोग्राम में साक्षी चौधरी, 54 किलोग्राम में प्रीति पवार, 57 किलोग्राम में जैस्मिन लांबोरिया, 60 किलोग्राम में प्रिया घंगास, 65 किलोग्राम में परवीन हुड्डा, 70 किलोग्राम में अरुंधति चौधरी और 75 किलोग्राम में लवलीना बोरगोहेन की दमदार चुनौती होगी. साक्षी चौधरी इन खेलों में अपनी संभावनाओं के बारे में क्या कह रही हैं? वो सुनते हैं.
2: जी, हम अभी कॉमनवेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं. हम 9 जुलाई को आयरलैंड जाएंगे जहां हमारा मल्टीनेशनल ट्रेनिंग कैंप होगा. वहां से हम डायरेक्ट कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जाएंगे. तो अभी हमारी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है.
1: पुरुष वर्ग में 60 किलोग्राम में भारत की पदक की बड़ी उम्मीद है सचिन सिवाच.
3: तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया. अपने अपोनेंट्स के सारे उनकी वीडियो देख रहे हैं, गलतियों पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तैयारी चली हुई है. सभी के गोल्ड लिए आने हैं.
1: बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय सिंह को भी बॉक्सर्स से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं.
4: देखिए, 14 इवेंट है टोटल हमारे बॉक्सिंग में और 7 लड़के और 7 लड़कियां. तो हमें लगता है कि जो आज तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारा रहा है वो गोल्ड कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया में, जब हमारे 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज आए थे. उस चैंपियनशिप में भी मैं मौजूद था और मुझे लगता है कि उससे बेहतर परफॉर्मेंस हमारा इस बार होगा.
1: बॉक्सिंग की बात करें तो सिर्फ राष्ट्रमंडल खेलों में ही नहीं, एशियन गेम्स और ओलंपिक में भी हम इस खेल में पदक जीतते रहे हैं. पुरुष वर्ग में सचिन सिवाच और जादूमणि सिंह जैसे उभरते हुए नाम हैं. वहीं महिला वर्ग में टोक्यो 2020 ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन के साथ साथ प्रीति पवार, जैस्मिन लांबोरिया, प्रिया घंगास जैसे बॉक्सर्स की भी अपने अपने वर्ग में तगड़ी चुनौती होगी. पदक की कितनी उम्मीद कर सकते हैं ऐसे बॉक्सर्स के रहते हुए?
0: देखिए, बॉक्सिंग हमेशा से हमारा एक स्ट्रांग पॉइंट रहा है, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो, बॉक्सिंग में हम अच्छा करते आ रहे हैं. इस बार बेन स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है और ये जो प्रेपरेटरी जो फेज था इसमें, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में हमारे टीम ने पार्ट लिया, जैसे कि इंडिया एशियन चैंपियनशिप्स में 3rd नंबर पे उन्होंने फिनिश किया और इंटायर वुमेन्स स्क्वाड ने मेडल्स लेके आए. तो हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ एथलीट्स है वो इस टाइम पे बहुत अच्छा है और आई वुड गो एज फार एज टू से कि महिलाओं का अभी इस बार CWG में मुझे लगता है चांसेस पुरुषों से भी ज्यादा है. तो हम अपने जो नजरें हैं वो महिला बॉक्सर्स पे टिकाए रखें, उनको उनके गेम्स को देखें और मुझे लगता है कि वाकई में मजा आने वाला है और आगे जाके इनमें से बहुत सारी लड़कियां LA तक तो जरूर खेलेंगी. मुझे ये लगता है कि ये सब लंबे टाइम, हालांकि बॉक्सिंग, रेसलिंग ये थोड़े इंजरी प्रोन भी होते हैं, पर मुझे लगता है कि ये सब लंबे टाइम के लिए है और खेलेंगे और CWG में अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे.
1: वेटलिफ्टिंग भी ऐसा खेल है जिसमें भारत कुछ पदकों की उम्मीद कर सकता है. इसकी टीम की बात करें तो पुरुष वर्ग में 60 किलोग्राम वर्ग में ऋषिकांत सिंह, 65 किलोग्राम में एम राजा, 79 किलोग्राम में अजय बाबू, 94 किलोग्राम में दिलबाग सिंह और 110 किलो से अधिक भार वर्ग में लवप्रीत सिंह अपनी ताकत दिखाएंगे. महिला वर्ग में पदक की सबसे बड़ी उम्मीद मीराबाई चानू 48 किलोग्राम भार वर्ग में भाग लेंगी. उनके अलावा ज्ञानेश्वरी यादव 53 किलोग्राम, बिंदिया रानी देवी 58 किलोग्राम, हरजिंदर कौर 69 किलोग्राम, संजना 77 किलोग्राम, सेराम निरुपमा देवी 86 किलोग्राम और मार्टिना देवी 86 प्लस किलोग्राम भार वर्ग में भारत की उम्मीदों का केंद्र होंगी. फिट होने के बाद वापस लौट रही मीराबाई चानू पदक को लेकर कितनी आशावान है ये सुनते हैं.
5: बहुत लकी हूँ कि हम पहले ही बर्मिंघम में आके हम ट्रेनिंग करने का मौका मिला है. हम सबका होप कर रहे हैं कि हम सब मेडल लाए इंडिया के लिए. तो प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रही है.
1: जी हिमिका, कॉमनवेल्थ गेम्स में वेटलिफ्टिंग में भी हमारे अच्छे खासे पदक आते रहे हैं. पदक की सबसे बड़ी उम्मीद मीराबाई चानू फिट होकर वापसी कर रही हैं. इस बार दोनों वर्गों को मिलाकर हम क्या उम्मीद कर सकते?
0: देखिए, मीरा का तो ये है कि उसको मैजिक मीरा कहे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो एक्चुअली एक मैजिशियन है. जब

0: हम मीराबाई को देखते हैं और जैसा उनका कद है और छोटी सी लड़की है मणिपुर से, जैसा कि आपने कहा इंजर्ड थी, पर वो उसने काफी दिनों तक यूएसए में रह के ट्रेनिंग भी किया, रिहैबिलिटेशन भी किया, तो मीरा का तो डेफिनेटली एक मिडिल चांस हम कह ही सकते हैं। जैसा आपने कहा कि एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा है, तो वेटलिफ्टिंग में मीरा का चांस हम इक्वली उसी तरह से सोच सकते हैं। भारत को गोल्ड मिलने वाले हैं, उसमें से एक तो मीराबाई चानू के नाम होना ही चाहिए और होगा भी शायद।
1: तो दोस्तों, ये थी भारतीय खेल प्राधिकरण साई की वरिष्ठ खेल पत्रकार और प्रतिनिधि हिमिका चौधरी। आकाशवाणी के स्टूडियो आने के लिए, हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, और जैसा मैंने कहा, लेट्स चीयर फॉर भारत।
1: जूडो में पिछली बार भारतीय दल ने 3 पदक जीते थे। इस बार न सिर्फ पदकों की संख्या बढ़ने बल्कि पहले गोल्ड मेडल की भी उम्मीद की जा रही है। चुस्ते स्फूर्ति और ताकत के इस खेल में भारत की तरफ से मेंस कैटेगरी में हर्ष सिंह की चुनौती 60 किलोग्राम, रोहित बसीर माजगुल की 66 किलोग्राम, अरुण कुमार की 73 किलोग्राम, हर्ष टोकस की 81 किलोग्राम, करणजीत सिंह मान की 90 किलोग्राम, अवतार सिंह की 100 किलोग्राम और यश गंगास की 100 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में चुनौती है। महिला वर्ग में अस्मिता डे 48 किलोग्राम, श्रद्धा कदाबुल चोपड़े 52 किलोग्राम, यामिनी मौर्य 57 किलोग्राम, उन्नति शर्मा 63 किलोग्राम, इनुन गनबी ताखिल्लाम्बम 70 किलोग्राम, इशरूप नारंग 78 किलोग्राम और तुलिका मान 78 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में अपना अपना दावा पेश करेंगी। पिछली बार सिल्वर मेडल जीतने वाली तुलिका मान ने इस बार गोल्ड के लिए ढेर सारी तैयारी की है। सुनते हैं क्या है उनकी तैयारी।
2: बीइंग एन एथलीट, एलीट एथलीट और ऑलरेडी आई प्लेड द कॉमनवेल्थ 22nd, तो मेरा अभी एम अलग है। मैं उन चीजों को, प्रेशर को नहीं लेके चल रही हूँ। मेरा मेन ये है कि मतलब 22 में जो मेरा सिल्वर आया था उसे मुझे अभी कन्वर्ट करना है गोल्ड।
1: तैराकी में भारत का प्रदर्शन राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक बहुत अच्छा नहीं रहा है। इतिहास की भी बात करें तो सिर्फ एक ब्रॉन्ज मेडल आया है और वो भी पैरा स्विमिंग के जरिए। फिर भी ग्लासगो में स्विमर्स की अच्छी खासी भागीदारी होगी। भारत ने स्विमिंग में भले ही कोई पदक अब तक न जीता हो, लेकिन तैराक अनीश घोड़ा को इस बार खूब सारी उम्मीदें हैं।
3: तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, ये कॉमनवेल्थ गेम्स बहुत बड़ा इवेंट है, हमारी बहुत हार्डवर्क हो रही है। हम भी चाहते हैं कि वहाँ जाके हमारे देश को प्राउड करे और एक मेडल जीत के वापस आए।
1: आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में भी भारत की दावेदारी है। मेंस कैटेगरी में तपन मोहंती, तपेश्वर नाथ दास, स्वातिश केपी, सत्यजीत मंडल, जबकि विमेंस कैटेगरी में प्रणति नायक, निष्का अग्रवाल, इशिता रेवाले, प्रतिष्ठा सामंता पदक के लिए जोर लगाएंगी। तपन मोहंती जिम्नास्टिक्स में भारत के नेशनल चैंपियन हैं। ट्रैक साइकिलिंग में भी भारत का दावा होगा। रोनाल्डो सिंह लट्टुंजाम 1000 मीटर टाइम ट्रायल, डेविड बेकहम एलकाटो चुंगो और जेम्स सिंह किथेल्ला क्रम एलिट किरिन, दिनेश कुमार और रोजित सिंह यांगलेम पुरुष एंड्योरेंस और परस्यूट स्पर्धाएं, जबकि सेंखो हर्षवीर सिंह 4000 मीटर टीम परस्यूट में साइकिलिंग ट्रैक पर होंगे। 3x3 बास्केटबॉल के विमेंस व्हीलचेयर कैटेगरी में भारत की चुनौती होगी, जिसमें रीना, रमेश चंद्र गुप्ता, इरेंगबंग ऋतु चानू, जाधव मीनाक्षी हरिश्चंद्र, रायन्नावर लक्ष्मी रायप्पा शामिल होंगी। लॉन बॉल्स में भी भारतीय खिलाड़ियों की भागीदारी होगी। पिछली बार भी इस खेल में हमें 2 मेडल मिले थे। इस बार मेंस कैटेगरी में सिंगल्स में पुतुल सोनोवाल, डबल्स में नवनीत सिंह और दिनेश कुमार शामिल हैं। विमेंस कैटेगरी में नयन मोनी सैकिया सिंगल्स में, जबकि रूपा रानी तिर्की और पिंकी सिंह की डबल्स में सहभागिता होगी। कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा खिलाड़ियों से भी ढेर सारी उम्मीदें हैं। क्या कुछ हो सकता है पैरा एथलीटों द्वारा, पैरा खिलाड़ियों द्वारा? संपूर्ण रिपोर्ट के साथ हमारे सहयोगी शाहिद आजमी।
4: जब इरादे बुलंद हों तो कोई भी बाधा मंजिल का रास्ता नहीं रोक सकती। भारत के पैरा खिलाड़ी इसी जज्बे के साथ अब ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में देश का गौरव बढ़ाने के लिए तैयार हैं। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया ने कहा कि खिलाड़ियों में इस बार अलग ही जोश है।
5: ग्लासगो जो कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है, आज पैरा खिलाड़ियों की सेंड ऑफ सेरेमनी, और मैं हर एथलीट को जानता हूं, अब की बार खिलाड़ियों में एक अलग ही जुनून है। कहीं नहीं कि हम पहले खेलने जाते थे, अब खिलाड़ी मेडल जीतने जा रहे हैं। अब की बार जो परफॉर्मेंस होगी वो एक ऐतिहासिक परफॉर्मेंस होगी। आप देखिए कॉमनवेल्थ में जो पैरा खिलाड़ी विशेष तौर पे, उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहेगी और कम से कम हम 5 से 6 मेडल जीतेंगे।
4: ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का 28 सदस्यीय पैरा दल 5 खेलों में चुनौती पेश करेगा।

0: रहेगा। दल में 11 पैरा एथलीट, 7 पैरा पावर लिफ्टर, 5 पैरा तैराक, 1 पैरा ट्रैक साइक्लिस्ट और 4 महिला व्हीलचेयर बास्केटबॉल खिलाड़ी 3x3 टीम में शामिल हैं। बात पैरा एथलेटिक्स टीम की करें तो इनमें देवेंद्र कुमार, दिलीप महादू, राकेश भाई भट्ट, रमेश सनमुगम, शुभमन जुयाल, मोहम्मद बासिल, सोमन राणा, सागर थायत, श्रेयांश द्विवेदी, शर्मिला और शिल्पा भारती चुनौती की अगुवाई करेंगे। हमने भारतीय पैरा दल में से कुछ खिलाड़ियों से उनकी तैयारियों और संभावनाओं के बारे में बात की। ये है डिस्कस थ्रोअर देवेंद्र कुमार।
1: अभी ये मेरा सेकंड कॉमनवेल्थ गेम है, फुल तैयारी के साथ अभी जा रहे हैं और वहाँ अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अपना पर्सनल बेस्ट देने की कोशिश करेंगे।
0: पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी शॉटपुट खिलाड़ी शर्मिला का कहना है कि पहले से बेहतर होगा इस बार।
2: 2022 में भी कॉमनवेल्थ पार्टिसिपेट किया था और अब भी कर रही हूँ। पीछे से अब बेटर है, अब से आगे बेटर होगा, आगे आगे बेटर होता ही जा रहा है। अच्छी सपोर्ट मिल रही है बीसीआई और साई की और हमारी सरकार खिलाड़ियों को बहुत ध्यान दे रही है और अच्छी मेहनत करके हम भी पीछे नहीं हटने वाले, देश के लिए मेडल लेके देंगे।
0: तैयारियाँ आपकी कैसी है?
2: हमारी बेस्ट तैयारियाँ हैं, हम डेली 6 से 7 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। मेरा सपना है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊं कॉमनवेल्थ में।
0: यह 100 मीटर T47 में दौड़ लगाने वाले मोहम्मद बासिल।
3: इट इज माई फर्स्ट मेजर कॉम्पिटिशन, लास्ट ईयर आई स्टार्टेड द पैरा स्पोर्ट्स, दिस ईयर आई विल फर्स्ट इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। सो हैप्पी, सो एक्साइटेड टू द बिग गेम्स, वेरी वेरी एक्साइटेड एंड कॉन्फिडेंट वी गेट इट मेडल रिप्रेजेंटिंग इंडिया।
0: देश के पैरा खिलाड़ी कितने मेडल जीतेंगे, यही सवाल हमने पैरा एथलेटिक कोच सत्यनारायण से किया।
4: पैरा ओलंपिक डेफिनेटली हम लोग 7 मेडल जीतने का उम्मीद कर रहा है। 5 मेडल तो कंफर्म है, 100% है। 2 मेडल नीचे ऊपर हो सकता है। मैं एथलीट होकर बोलता हूँ एथलेटिक्स पैरा का बहुत अच्छा करेगा।
0: जो एथलेटिक्स टीम जो आपको दी गई है, जो खिलाड़ी सिलेक्ट हुए उनको देखते हुए क्या लग रहा, कितनी मजबूत है, क्या वहाँ पर संभावना उनसे देखते
4: हैं? आप लोग को मालूम है अभी ग्लासगो में बहुत ठंड है, फिर भी मेरा एथलीट पूरा प्रिपेयर है, 100% हम अच्छा मेडल लेके आएगा।
0: अब बात करते हैं पैरा पावर लिफ्टिंग खिलाड़ियों की, जिनमें परमजीत कुमार, अशोक, झंडू कुमार, सुधीर, जसप्रीत कौर, कस्तूरी राजमणि और सुमन देवी से पदक की उम्मीदें रहेंगी। संभावनाओं पर पैरा पावर लिफ्टिंग कोच राजेंद्र सिंह रहेलू कहते हैं,
5: कॉमनवेल्थ में अच्छी संभावना है, हमारे सारे खिलाड़ी फिट है, हम कोशिश है हमारी इस बार पावर लिफ्टिंग में अच्छे मेडल आएंगे। और बाकी जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बोला ही है, देवेंद्र जी ने, कि बहुत बड़ा दल जा रहा है इस बार, पहली बार इतना बड़ा दल जा रहा है, तो एक नया रिकॉर्ड बनेगा, इंडिया बनाएगा, मुझे श्योर है कि हम जीत जाएंगे।
0: पैरा तैराकी में रवि वीरा वेंकट, बुडगिना अली इमाम, सुयश जाधव, चैतन्य विश्वास कुलकर्णी और स्वातिक पाटिल भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसी तरह पैरा ट्रैक साइकिलिंग में लिशा दास अकेली भारतीय खिलाड़ी होंगी, जबकि महिला व्हीलचेयर बास्केटबॉल 3x3 टीम में रितु चानू एरेगबम, रीना रमेश चंद्र गुप्ता, मीनाक्षी हरिचंद जाधव और लक्ष्मी रायप्पा चुनौती पेश करेंगी। इस अवसर पर रियो पैरालंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट दीपा मलिक से हमने राष्ट्रमंडल खेलों में देश के खिलाड़ियों से संभावनाओं पर बात की।
6: संभावनाएं बहुत अच्छी है इस टीम में, हमारे कॉमनवेल्थ रैंकिंग 1, वर्ल्ड रैंकिंग 1 ऐसे खिलाड़ी भी जा रहे हैं। तैयारियों से ज्यादा खुशी इस बात की है कि नंबर ऑफ स्पोर्ट्स बढ़े हैं, अब 5 विविध स्पोर्ट्स में हमारे पैरा एथलीट जा रहे हैं और लगभग 28 एथलीट जा रहे हैं, इसमें 40% महिलाएं जा रही हैं, मुझे बहुत खुशी है।
0: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की पैरा स्पर्धाओं में अब तक 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते हैं। इस बार उम्मीद है कि भारतीय पैरा खिलाड़ी इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे।
7: भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से विशेष बात की कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के बारे में हमारे सहयोगी शाहिद आजमी ने।
8: आई होप दैट प्लेयर्स डिड प्रिपेयर्ड वेरी वेल एंड इसी साल थोड़ा लिमिटेड इवेंट है हमारा, बट फिर भी अच्छा, होप दैट दे डू गुड।
9: एशियन गेम्स का सेमीफाइनल मानती है, इसको कैसे देखते हैं? गेम्स कम है, होप्स ज्यादा, लेकिन
8: एशियन गेम्स के पहले ये तो कॉमनवेल्थ गेम्स भी है, वो तो अच्छा है। एशियन गेम्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, एनीवे 2 मंथ्स इज देयर दे विल डू, बट अभी तो ग्लासगो में भी आई एम एक्सपेक्टिंग गुड परफॉर्मेंस। व्हाई? बिकॉज द गवर्नमेंट, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑल एसोसिएशन इज इन वन लाइन एंड दे आर प्रोवाइडिंग ऑल द फैसिलिटीज विच प्लेयर्स वांट्स। सो एक्सपोजर इज द मस्ट, दे आर गेटिंग 4 एक्सपोजर एंड ऑल दोस थिंग एंड एसोसिएशन इज वर्किंग ऑन इट एंड लॉट ऑफ स्पॉन्सर्स ऑल्सो, फॉर IOA इज ऑल्सो गिविंग फुल सपोर्ट टू प्लेयर्स, सो दैट आई होप दैट प्लेयर्स अच्छा करेंगे।
9: लास्ट क्वेश्चन, 2023 में हम होस्ट कर रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम, तो यहाँ और कुछ सीखने के लिए होगा, देखने के लिए होगा, IOA इसके बारे में क्या कहेगा, कैसे प्लान कर रहा है?
8: Our team is there, our IOA team and government team, all team is there to see what are all the things they are doing. हम तो पीछे नहीं है, पहले भी बड़ा कॉम्पिटिशन तो इधर ऑर्गेनाइज किया है, बट फिर भी what are all the changes we have to do, all team will be there.

0: भारत के खेल मंत्री मनसुख मांडविया को भी दल से ढेर सारे पदक की उम्मीदें हैं।
1: मेरा पक्का विश्वास और भरोसा है कि भारतीय एथलीट अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, बहुत हौसले के साथ खेलेंगे, देश का गौरव बढ़ाएंगे और भारत का परचम कॉमनवेल्थ में लहराएंगे। दोस्तों, मोदी जी ने हमारे एथलीट को अपने परम मित्र कहे। जब हमारे एथलीट कॉमनवेल्थ के लिए जा रहे हैं, तब दोस्तों मोदी जी की शुभेच्छा आपके साथ है। देश के 140 करोड़ की जनता का भरोसा आपके साथ है।
0: ग्लासगो में भारत के लिए खेलों से इतर भी बहुत कुछ होने वाला है। बता रहे हैं भारत के मिशन प्रमुख, दिग्गज टेनिस खिलाड़ी और भारत की डेविस कप टीम के कप्तान रोहित नागपाल।
2: सिंबॉलिकली अगर आप देखा जाए तो हम लोग नेक्स्ट होस्ट है, तो खेल के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज प्लान हो चुकी है। वहाँ पे हम लोगों को बैटन लेना है, हम लोगों को वहाँ से फ्लैग लेना है कॉमनवेल्थ का, हम लोगों को कल्चरल डांस दिखाना है इंडिया का, फिर एक ट्रेड कट ग्रुप भी बन रहा है हम लोगों का। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है, एक्सचेंजेस जो कि हम लोग प्लान कर रहे हैं सारा वहाँ खेल के अलावा भी। तो सिंबॉलिकली अगर देखा जाए ऑलराउंडेडली तो एक बहुत जरूरी ये एक ट्रिप है जिसके अंदर हम लोग जाके ये सब चीजें लेके आएंगे इंडिया के लिए और सारा फिर फोकस शिफ्ट करेगा इंडिया पे कॉमनवेल्थ गेम्स का। तो ये काफी सालों बाद एक नया गेम इंडिया को आएगा, अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और यही एक होलिस्टिक पिक्चर है।
0: कुछ ही घंटे में पदकों की दौड़ शुरू होने वाली है और एक दूसरे को पीछे छोड़कर आगे निकलने की होड़ मचने वाली है। पदकों की इस आपाधापी में किसी का सितारा चमकेगा तो किसी को जीत के लिए नई सीख और जज्बा हासिल होगा। तो कल से रोमांच शुरू होने वाला है, हम भी आपसे जुड़े रहेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की हर हलचल, धड़कन और रोमांच के साथ। कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान और सहयोगी शाहिद आजमी के साथ धर्मेंद्र को भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।
3: The Commonwealth Games.
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM Rainbow.
5: जी आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती और शुरुआत कर

0: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बेहतर रेल सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीक के कारण रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने युवा पदार्थ बल दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष

0: समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
1: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मॉनसून सत्र के लगातार तीसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित होती रही। व्यवधान के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका। दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं चल सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने अपना विरोध जारी रखा। आज लोकसभा की कार्यवाही 3 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों के विचार सुने हैं और सरकार खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों से कार्यवाही बाधित करने के बजाय विस्तृत चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
4: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं।
5: हम एडजर्नमेंट मोशन मांग रहे हैं ताकि ठीक से डिस्कशन हो। आप 8 घंटे के लिए वंदे मातरम डिस्कस कर सकते हैं, तो आप लंबे समय के लिए ठीक ढंग से एडजर्नमेंट मोशन पे ये इशू भी डिस्कस कर सकते हैं।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा है कि सरकार से नीट परीक्षा लीक मामले पर युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन मिलने पर वे अपना अनशन समाप्त कर देंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखे पत्र में श्री वांगचुक ने कल रात अस्पताल में उनसे मिलने के लिए दोनों मंत्रियों का आभार व्यक्त किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब तक केवल 2 रह गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय 2013-14 में लगभग 39,000 करोड़ रूपये से बढ़कर

0: 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले दो वर्षों में सरकार ने अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने के आरोप में देश भर में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक पहुंच से बाहर कर दिया है। लोकसभा में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गुन ने कहा कि सरकार शिकायतों के आधार पर ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में तोतापुरी आमों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तीनों राज्यों में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की आय में लगातार हो रही गिरावट की शिकायतों के मद्देनजर जारी किए गए हैं। अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हुई बैठक में मंदिर प्रबंधन, दान प्रणाली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, ट्रस्ट में रिक्त पद भरने और धार्मिक समिति के पुनर्गठन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ट्रस्ट ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था पहले की तरह ही अडिग है और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या स्थिर है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। आयोग राज्य सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त संगठनों के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते, पदोन्नति और पेंशन से संबंधित संशोधनों की सिफारिश करेगा। आयोग अगले 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। छत्तीसगढ़ में अब अग्निवीर सैनिकों को पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। इसका लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा जो 4 वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण पत्र के साथ सेवामुक्त हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। कल हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी इसी तरह के मौसम की स्थिति बने रहने का अनुमान है। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग स्थित सुरंग में बचाव दल ने 8 और शव बरामद किए हैं। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: नामची जिले के एनएचपीसी की टनल के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए आज तीसरे दिन भी रेस्क्यू दल काम कर रही है। कम विजिबिलिटी और मीथेन गैस के लीकेज के वजह से शवों को निकालना मुश्किल हो गया है। इस बीच सिक्किम सरकार ने मरने वालों के पार्थिव शरीर उनके परिवारों को सौंप दिए है। केंद्र सरकार के अलावा सिक्किम सरकार और एनएचपीसी ने मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। घटना के समय टनल के अंदर कम से कम 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: कश्मीर में आज अनंतनाग जिले के लालचौक इलाके में आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। हमले के बाद सुरक्षा बलों का पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतक पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि देते हुए दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में स्वदेशी रूप से निर्मित माहे श्रेणी का एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस मालवन को शामिल किया है। ये नौका जलमग्न निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियानों और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों के साथ साथ बारूदी सुरंगों को नष्ट करने की क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी घटकों से निर्मित ये नौका आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बल देती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिया शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास के से मुलाकात की। श्री सोनोवाल ने कहा कि दोनों देश बेहतर भविष्य

0: के लिए परस्पर संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया, वहीं आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। इस बीच पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला जापान के युशी तनाखा से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लक्ष्य सेन ने पहला गेम अपने नाम कर लिया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
1: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% के नुकसान से 715 अंक लुढ़ककर 76,755 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.8% की गिरावट से 191 अंक गिरकर 23,996 के स्तर पर बंद हुआ। एनएसई मिड कैप सूचकांक में 1% से अधिक और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 33 पैसे के नुकसान से 96.57 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर रहा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायिक अधिकारियों की सेवा निवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर विचार करने का निर्देश दिया। न्यायालय की पीठ ने पूरे देश में जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवा निवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की समान मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनाना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for making the dream of Viksit Bharat a mass movement with youth playing a key role in it. Government reiterates readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue. In Parliament, criticizes attempts to use youth protests for political gains. Opposition disrupts proceedings in both houses, demands resignation of the Education Minister before discussion. Delhi High Court seeks responses from centre and police on pleas alleging use of excessive force on protesters during Parliament March. Railway Minister Ashwini Vaishnav says train accidents decline sharply with improved rail safety, infrastructure maintenance and use of modern technologies. The US blames Iran for the naval blockade against Saudi Arabia in the Red Sea by Yemen's Houthi group. And in China Open badminton, PV Sindhu and Ayush Shetty enter singles pre-quarterfinals. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The Prime Minister made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Viksit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries, as well as senior officials from the Prime Minister's office. The Prime Minister underscored the importance of tackling the serious issue of drug abuse among youth. He also stressed the importance of promoting technology and fostering innovation through startups in the sports sector. Mr. Modi also highlighted that the widespread adoption of initiatives such as the PM Kusum scheme by farmers can bring transformative changes to the agriculture sector. The government today reiterated its readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue in Parliament. Speaking in the Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju.

तुम्हारी शांति 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से ही दिल तक रेनबो एसएमएस रे परवर्ती मेसेज करी शांति राहस कुमार बेहरा ढेंकानालु देन मेसेज करी शांति सुनील कांत महांती सिलु आकृति देवकाली संखतरास कटक रु सुनिदेवा सेमानंक मनपसंद गीता

0: सुनो, जहाँ मैं जाना चाहती हूँ तुम ले चलोगे?
1: अजी कहके तो देखो।
0: जहाँ भीगा भीगा मौसम हो, हम हो और तुम हो,

चमक फूलों में रंगत ना रहेगी, अरे कुछ भी ना रहेगा अगर मोहब्बत ना रहेगी।

विशेष करुछु भक्ति गीतर कार्यक्रम अर्घ्य थाळी को ट्यून करिसंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को दिल से दिल तक वर्तमान सुनंतु अति बड़ी जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद् भागवतर 102 भाग

पवित्र रथयात्रा उपलक्षे सुभद्रा शक्ति बजार आपणंकु जणाउछि असुमारी शुभेच्छा। एही शुभ अवसर रे सुभद्रा शक्ति बजार रे एसएचजी मा मानंक हात तयारी हस्ततंत ओ हस्तकला सामग्री सहित मिलिट्रु प्रस्तुत विभिन्न जैविक सामग्री रो अपूर्व संभार। पवित्र घोषयात्रा उपलक्षे सुभद्रा शक्ति बजार रे विभिन्न क्रय उपरे स्वतंत्र रिहाती। आसंतु आपणंक अपेक्षा रे सुभद्रा शक्ति बजार एसआईआरडी कैंपस यूनिट 8 भुवनेश्वर।

तुम जब भी ऐसे देखते हो हमें, कुछ होता है सनम, बस ऐसे तुम देखा ना करो। व्हाट्सएप आगे पुणी थे स्वागत आपणको मॉर्निंग में लोड़ी रे अच्छे आपणको सहित म्यूजिक मित्र अनु दिल से दिल तक। सो फ्रेंड्स, ये जो टिके टिके वर्षा थंडा थंडा पागरे मॉर्निंग में लोड़ी रे आपणको सहित म्यूजिक मित्र अनु रही करिबा को आपणको सहित बहुत गुड़ाए गप, कारण अनेक दिन है गपसप है ना आपण सहित अनेक किसी कथा अच्छी हेले कौन खाऊ कहले। अच्छा कहबे नी सिक्रेट, ओके ओके सिक्रेटली खातु ना पेट कौन बजे कहती ना मानते बेसी खाइबा डिस्कस कले पेटा मानते समस्त नजर पड़े आउ पेट कामुड़े एमती किसी रही अवश्य केक्सपीरियंस है कहती हेले आमे जमा भी।

0: Hey friends, tune करिचंदी 100.4 आकाशवाणी FM Rainbow कटकु दिल से दिल तक music में त्राणु रोचिया जी आपनों का सह एवं गमे कथा हो जी जी इबर्सा दिने आपनों को उड़े सरक क्यों स्थान खास करी बहुत पसंद एवं बुरी वक्त बहुत लगे तो देखने बाकी करिचंदी कल हेलो
1: हेलो वेरी गुड मॉर्निंग
0: प्रथम में निज रेडियो रो वॉल्यूम को ऑफ करों तो ताकि हम कथा हे परबा
1: हां मैडम
0: हां तो के कहउछंती गोठ कहउछंती
1: मु कोलाहानी जिला भानी पाटना जगन्नाथपुर रो चित्र संसबर कहउछी मैडम जय जगन्नाथ
0: ओ जय जगन्नाथ केमती अछंती प्रथमे कहंतो
1: मु तो बहुत भलो अछि आपण केमती अछंती
0: बहुत बढ़िया आज रो टॉपिक ऊपर कोन कहबे
1: मु आ कोनो कहबी हमर फुरली झरन रे बुलीबा पाए बहुत भलो लागे आपण थरे आसंतु बुलीबे झरना पानी होती सेने हमर पार्क ओसी बुलीबा पाए बहुत भलो लागे वर्षा होतिबो जंगल पहाड़ ते आसी ना बहुत सिनेरी ओसी
0: अच्छा पाखा पाखी आपण घर पाखा पाखी
1: हां हम पाखरे हेबो 30 किलोमीटर हेबो
0: अच्छा अच्छा अच्छा जागर नाटा कोन आउथरे कहि देले
1: फुरली झरन
0: अच्छा फुरली झरन कारण आम लिसनर्स माने सुनु छन
1: कोलाहांडी रो फुरली झरन फेमस आउ
0: अच्छा निश्चय निश्चय माने हमें चाहिब आम लिसनर्स माने जो माने सुनु छन से माने भी जानत एंजॉय करंत आपन जानती
1: हां मैडम
0: ओके
1: जाखम भी ओछे मैडम हां फुरली झरन जाखम ते पाखरे पेर मंजी भी ओछे मैडम तने 30 एकड़ रे इने अमर बगीचा ओछे आंबो बगीचा जांबो पिजुली जते कोदली एटा मन अछि आउ
0: ओके बढ़िया बढ़िया ठीक अछि आमे जानि रु निश्चय बुलिया को जेबो ठीक अछि रहली नमस्कार
1: जय जगन्नाथ
0: जय जगन्नाथ तो एथिले चित्रा कोलाहांडी रो बहुत बढ़िया बढ़िया कथा कहिले तांको कोलाहांडी रे को जगह अछि बुलिबा पई से जगह उडी को मध्य आम पखरे रखिले जे ए जगह आपण जदि बुलिया को आसीबे खास करी बरसात में बहुत भल लागिवो तो निश्चय जो माने बुलिबा प्रिय खास करी मु चाहि भी से माने निश्चय जानतु आमा ओडिसा कोटे बहुत सुंदर जगह अनेक जिंस हम एक्सप्लोर करी परुने किंतु जो माने बुलंती से माने निश्चय हमें चाहिबो जे जानतु एक्सप्लोर करंतु तो आगे को बढ़िबा देखनेबा के करछदि कॉल हेलो
2: ओ मैम नमस्कार जय जगन्नाथ
0: नमस्कार जय जगन्नाथ की कहचंती कोठ कहचंती
2: मैम मु प्रफुल्ल पाला कहतली कुवार पाला माणिया मधरु
0: केमती अछंती
2: मैम बहुत बढ़िया आती पागल भलो आती बरसा ता पारे आज के छाड़ी छी आ चारि पांच दिन बरसा लगातार लागि रही छी आ
0: ओहो माने आज के छाड़ी जाई छी तहले
2: आज के छाड़ी सकल के पागल भलो आती
0: ओके त आज रे टॉपिक ऊपर कोन कहबे
2: मैं देखु बर्षा दिन तो पूरी तो जी प्रथम तो भल लगे सदा बेले प्राए जाए दि चार वर्ष जापर आंतु मत शिवालय जगह मान को बहुत भल लगे पानी थाए धर पाखे अच्छी सी बीच गोटे महापुर मंदिर अच्छे देखा भल लगे धवलेश्वर टे जा भल लगे कपिलास बैस जा भल लगे मत बेस भल लगे आड़ा मत गहरे मारे को बेस भल लगे
0: अच्छा नई भी धरती
2: बहुत माछ मरा हुए माछ तो कमी जा विश्वास पकड़ माछ मरा प्राय बर्षा आईला मान घर को खी मुगुरा घर की टाप गुरा बुहा माछ मारु धूम
0: बढ़िया तो तेणुक एंजय करू आमती बुलू था ठीक अच्छे ओके रही नमस्कार
2: नमस्कार मैम जय जगन्नाथ
0: तो ये थिले प्रफुल्ल भाई माणिया बंधरु आउ माछ धरिबा को पोखरी रु बहुत बढ़िया लगे तो माछ खाली धरिले हेबनी जो माने सुनुथिबे तांकर पूरा बहुत इच्छा हेबनी माने जानि पारथिबे तो पठे भी देबे तो आगो को बढ़िबा सुनबे गोटे ब्यूटीफुल ट्रैक आपुनी आसी कथा हेबे आपनक सहित दिल सी दिल तक

0: प्रभु ए मासरे भी एते इलेक्ट्रिक बिल केमिति देबी।
1: अरे राजू भाई पीएम सूर्य घर योजना रो यूएल मॉडल थाउ थाउ तोरे एते चिंता काहे कि जे मु तो मो घरे सोलार लगाई देलिनी बिजली बिल टेंशन रो मु पूरा मुक्ति।
0: सतरे भाई?
1: हां भाई मात्र 1875 टंका रे पुणी एथिरे वार्षिक 5000 टंका पर्यंत बिजली बिल रे संचय हेबो ता सह 5 वर्ष जाए मेंटेनेंस खर्च भी नहीं।
2: आज्ञा हां आज ही अधिक सूचना पाई निकटस्थ विद्युत कार्यालय अथवा 1800345718 रे जोगाजोग करंतु।
3: समय सरी सरी आसुची डायल इन लाइव चैट चैट रो आमर टॉपिक रही थिला कि वर्षा दिने जदि बुलिबा को आपनकर इच्छा हो तबे ओडिसा रो केउ जगह बुलिबा को चाहिबे तो देखने बाकी करछंती कॉल

साथी समय वर्तमान सकाळ 10:00 बजे 2 मिनिट हबाकु जाउ छी आउ आरंभ होई छी आपनको प्रिय कार्यक्रम रेनबो एसएमएस आउ रेनबो एसएमएस रे जे माने पर्यंत एसएमएस करी नांती बा व्हाट्सएप रे मेसेज पठे नांती सेमान को कही रखे जे जदि सुनिबा को चाहौचंदी निज मनपसंद गीत किछि तबे निश्चय हम पाखो को रिक्वेस्ट पठे परिबे टाइप करंतु एफएमआरसी स्पेस दे निज फेवरेट गीतर प्रथम लाइन लिखंतु स्पेस दे गीतर जो फिल्म बा एल्बम रो ताना लिखंतु स्पेस दे निज ना एवं ठिकाना लिखि सीधा पठे दियंतु 09495963210 ए नंबर रे 8895254200 रहि छि हमरो व्हाट्सएप नंबर सेठी मध्ये पठे परिबे आउ आम पाखरे आसिकी पहुंची भी जाइछि आपनक रिक्वेस्ट राजेश रितिका एवं मनीषा नायक चर्चिका बजार जगतसिंहपुर रु करिछंती सुनबा को चाहिछंती जुबिन गर्ग कंठ रे गोटे ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी गैंगस्टर तो चलंतु सुनबा

रेनबो एसएमएस रे पुनि थरे स्वागत आपनको आ परवर्ती गीत टी रिक्वेस्ट आमको आसी छि करिछंति आम पखकु जयपुर कोरापुट रु स्वराज सिंह आम पखकु लिखि कि पठैछंति सुनबा पई सपन बणिक चलचित्र रो टाइटल ट्रैक जहाकु गाइछंति अनुराधा पोडवाल एवं ता सह लिखछंति शुभ सकाळ समस्तंकु जय जगन्नाथ आपनको मध्य बहुत बहुत शुभेच्छा।

ओडिशा सरकारक समवाय विभाग तरफ राज्यर समस्त कृषक भाई भोनी मानक सूचित करा जाउछि जे चलित 2026 मसिया खरीफ ऋतु पई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रे निज फसल धान मका कपा अदा मांडिया चीनाबादाम हलदी ओ हरड चासर बीमा पंजीकरण कराइ नियंतु। भाग चासी ऋणी ओ अणऋणी चासी समस्त निज फसल बीमा पंजीकरण निर्धारित तारीख 31 जुलाई सुद्धा निकट।

0: प्रस्त कृषि समवाय समिति जता पैक्स लैम्स बैंक शाखा किंबा जनसेवा केन्द्र रे कराई परिबे। चासी पिछा 5 एकर जमीर फसल बीमा पंजीकरण संपूर्ण देयमुक्त अटे। प्लॉट पिछा केवल 1 टंका देबाकू पड़िबो। अधिक विवरणी पई निकटस्थ कृषि समवाय समिति जेकोनोसी बैंक शाखा किंबा कृषि और समवाय अधिकारी को जोगाजोग करंतु।
1: रेनबो एसएमएस रो परवर्ती गीत रिक्वेस्ट करिसेंती हेमंत चांद माणिया बंध सुनिया पटना बडंबारु काबेरी चलचित्र रो गोटे गीत सुनिबा को चाहिसेंती चंद्राणी मुखर्जी कंठरे।

0: आनंद बक्सी को प्रथम ब्रेक मिलता चलचित्र भला आदमी रे जो सुप्रसिद्ध एक्टर भगवान दादा से ब्रेक दे 1958 मसीह फिल्म रे से आगो को बढ़ी से फिल्म रे चारिटी गीत लिखी से टोटल पाई 150 टंका एवं तापरे आउ से पछ को फेरी नहांती सफलता आगो को मिली 1965 मसीह रे जब जब फूल खिले चलचित्र रो एवं तापरे आराधना शोले अमर प्रेम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ताल इमती किती किती चलचित्र एभली रही छि जहार गीत अमर हे जाई छि तांको लेखनी रो से आजि नहांती सत किंतु तांको गीत माध्यम रे से बंची रही छंती आम हृदय रे
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

सवाल पूछ लिया जाएगा और उस सवाल का जवाब देकर आप बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज। और अगर बॉलीवुड सरताज आप बने तो कॉल मिलाएंगे हम आपको, रैंडमली कोई नंबर चूज करेंगे, आपको कॉल मिलाएंगे, आपसे बातें करेंगे और सही जवाब आपसे डायरेक्टली ऑन एयर जानेंगे। रही बात आपके नाम की, तो आप सबका काम व्यर्थ बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर आपने मैसेज किया है तो आप सबके मैसेजेस पढ़े जाएंगे, आप सबके नाम लिए जाएंगे, आपके शहर का नाम भी लिया जाएगा। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर व्हाट्सएप मैसेज करना है जो बिल्कुल फ्री है। और सवाल तो एकदम ही आसान है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया था कि अगर मेरी बातों को आपने ध्यान से सुन लिया ना तो आंसर ढूंढने के लिए आपको कहीं नहीं जाना होगा। जैसे कि आप आकाशवाणी रेनबो सुनते हैं उसके बाद कहीं नहीं जाते हैं। तो फिलहाल आपको बता दूं कि आज का सवाल क्या है। तो आज की क्विज है कि अपकमिंग जनादेश जो मूवी है प्रकाश झा की, उसमें मुख्य भूमिका कौन निभा रहा है। ऑलरेडी बता चुकी हूं, अब आपकी बारी। व्हाट्सएप मैसेज करना है, लेकिन हाँ ध्यान रहे सबसे पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम, उसके बाद भेज देना है इस नंबर पर जिसका नंबर का नाम है 9868107070 9868107070। और हाँ, मेरा नाम बबीता त्रिपाठी, शो का नाम बॉलीवुड ट्रेल्स, टोटल मिला के बीटी विद बीटी एंजॉय कर रहे हैं आप।

कल यानी 20 तारीख को रामायण का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और निर्देशक एटली की बात करें तो क्या जबरदस्त तारीफ की है भाई। वैसे तो लगभग सभी ने तारीफ की है इसके एकदम भव्य ट्रेलर की, लेकिन एटली जब कुछ कहते हैं तो भाई निर्देशक हैं, ऐसे में उनकी बात अलग ही मायने रखती है। उन्होंने रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी और पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने कहा है कि जो इसका एक्साइटमेंट है इस मूवी का वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब जवान जैसी मूवी को इन्होंने डायरेक्ट किया है और वो मुरीद हो गए हैं इस ट्रेलर को देखकर। उन्होंने कहा है सोशल मीडिया पर कि नमित मल्होत्रा निर्देशक जो निर्माता है और निर्देशक नितेश तिवारी है और फिल्म की स्टार कास्ट है सब जबरदस्त हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि विजन, विजुअल्स और कलाकारों के अभिनय की जबरदस्त तारीफ है क्योंकि वो भव्य है, जादुई है, उनका जो अनुभव है वो देखकर ऐसा ही कुछ है। हर एक पर्सन की उन्होंने अलग अलग तारीफ की है, पूरा फ्रेम उन्होंने भव्य, नया और जादुई महसूस होता है ऐसा उन्होंने लिखा है। अब ऐसे में जो एक्साइटमेंट है वो बढ़नी तय है रामायण की। और एक फिल्म और है जिसके ट्रेलर का हम सबको इंतजार है और उसकी रिलीज यानी ट्रेलर की रिलीज डेट कह सकते हैं या फिर उसका जो लॉन्च है वो भी काफी भव्य होने वाला है। वो कौन सी फिल्म है जानेंगे, बताएंगे थोड़ी देर में। आपको जानना ही होगा क्योंकि उस मूवी की भी काफी चर्चा है। थोड़ी देर में लौट कर

तो जी अभी रामायण की बात की, क्या ग्रैंड उसका लॉन्च किया गया है उसका ट्रेलर, और साथ में अब टॉक्सिक की बात कर लेते हैं जिसके ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च की काफी चर्चा है और इस बात की भी चर्चा है कि इन दोनों ही बड़ी मूवीज में है हमारे यश और उनको देखने के लिए हम सब एकदम लालायित हैं क्योंकि हम सब के वो फेवरेट हैं। फिलहाल आपको बता दूं कि जो टॉक्सिक मूवी है उसकी रिलीज डेट तो 26 अगस्त है लेकिन उससे पहले ट्रेलर ऑब्वियसली लॉन्च

तो जी अभी रामायण की बात की, क्या ग्रैंड उसका लॉन्च किया गया है उसका ट्रेलर, और साथ में अब टॉक्सिक की बात कर लेते हैं जिसके ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च की काफी चर्चा है और इस बात की भी चर्चा है कि इन दोनों ही बड़ी मूवीज में है हमारे यश और उनको देखने के लिए हम सब एकदम लालायित हैं क्योंकि हम सब के वो फेवरेट हैं। फिलहाल आपको बता दूं कि जो टॉक्सिक मूवी है उसकी रिलीज डेट तो 26 अगस्त है लेकिन उससे पहले ट्रेलर ऑब्वियसली लॉन्च होगा और वो बड़ा ग्रैंड होने वाला है। बेंगलुरु के एक ग्रैंड इवेंट में इसको लॉन्च किया जाएगा और कहा जा रहा है कि 8 अगस्त को इसका ट्रेलर लॉन्च कर दिया जाएगा और टॉक्सिक अ फेरी टेल ऑफ फेरी ट्रेल फॉर ग्रोन अप्स, इसके लिए हम सब की जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ाई जा रही है। धीरे धीरे इसकी जो अपडेट्स हैं वो और ज्यादा आ रही हैं। फिलहाल देखेंगे ट्रेलर देखकर हम सब की क्या राय बनती है। वैसे एक बात तो फिक्स है कि जब यश होते हैं किसी मूवी में तो वो मूवी काफी यशस्वी बन जाती है ना। तो फिलहाल देखते हैं इस मूवी का क्या हाल होता है।

0: वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
2: लेट्स जॉइन द मेगा प्लांटेशन ड्राइव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए
3: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने

फिलहाल आपको बता दूं, मैंने पूछा था कि अपकमिंग मूवी जनादेश में मुख्य भूमिका में कौन है, आपको बस यही बताना है। सबसे पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम, उसके बाद आंसर लिखना है और भेज देना है 9868107070 पर व्हाट्सएप मैसेज करके। एक बार फिर से सुन लीजिए 9868107070।

आप सबके नामों की जिन्होंने जवाब दिया है आज के क्विज का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मोहम्मद इम्तियाज जवाहर कैम दिल्ली से लिख रहे हैं और इनका ही मैसेज सबसे पहले दिखा, लेकिन आपको बता दूं उससे पहले भी बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं जिनको हम शुरू से लेते हैं ताकि कोई नाम मिस ना हो। रोहित श्रीवास्तव दिल्ली से लिख रहे हैं और सूरज का मैसेज भी दिखा है, लेकिन हाँ सबसे पहले अपना नाम लिखने को कहा था। कई बार मिस हो जाता है आपका नाम सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने सबसे पहले अपना नाम अपने शहर का नाम नहीं लिखा, फिर आंसर लंबा लिख दिया। आंसर लिखना है सबसे पहले अपना नाम अपने शहर का नाम, बस इतनी सी बात, और आंसर भेज देना है, दैट्स इट। सलीम मलिक मेरठ से लिख रहे हैं और तरुण कोहली सूरजकुंड से लिख रहे हैं, प्रवीण चौहान मध्य प्रदेश से, इरशाद अशरफी शहर का नाम है इनके, और इरशाद का नाम इरशाद है या अशरफी है या क्या है पता नहीं, लेकिन हाँ ये शायद इन्होंने राजस्थान से मैसेज किया है। और हैरी सिंधु बटिंडा से लिख रहे हैं और नेक्स्ट मैसेज अनूप साहू का है, उसके बाद सुखलाला बाला का है वेस्ट बंगाल से, और नेक्स्ट मैसेज दिख रहा है मुझे कोमल और पूजा का दिल्ली से सही जवाब के साथ। ये सब सही जवाब के साथ आंसर आए हैं, इम्तियाज सही जवाब के साथ मैसेजेस आए हैं, और इम्तियाज जवाहर कैम कीर्ति नगर से लिख रहे हैं, और निकिता कहां से लिख रही है, पुणे से लिख रही हैं, नीतीश कुमार रेशम नगर झारखंड से, और विनीत कुमार बदायूं उत्तर प्रदेश से, संजय खत्री कोल्हापुर से, और तुषा ये नेक्स्ट मैसेज अपना नाम सबसे पहले लिखते तो अच्छा लगता ना, ढूंढना पड़ रहा है मुझे, निधि प्रयागराज से, और रणवीर मोनिश ये कहीं से लिख रहे हैं, अभी ढूंढने का टाइम नहीं है। कविता देवभूमि उत्तराखंड से लिख रही हैं, मीना चौधरी शास्त्री नगर मेरठ से, दानिश कतौली से, और तवसीफ अहमद का मैसेज श्रीनगर से आया है, और मिसेस धर्म भाटिया जी का मैसेज रोहतक से आया है, राजकुमार के संतानी महाराष्ट्र से लिख रहे हैं, ललित का मैसेज आया है पंजाब से, राजीव कुमार का मेरठ से, और टूडेज क्वेश्चन तो मैंने ही पूछा था। चलिए ठीक है, अपना नाम भी लिख देते तो ज्यादा अच्छा होता, नाम नहीं लिखा हुआ है। सीमा मेरठ से लिख रही हैं, और ये भाई थैंक यू सो मच, तारीफ में आपका नाम गुम हो गया। औरंगाबाद बिहार से महेंद्र प्रताप सिंह का मैसेज, ऋषि कटारिया पवन कटारिया पंजाब से, अजय कुमार का छत्तीसगढ़ से, और नेक्स्ट मैसेज किसका है भाई, अपना नाम सबसे पहले आपने भी नहीं लिखा है उमेश, अगली बार ये गलती नहीं होनी चाहिए। फिलहाल आपने लिखा है कयाला से, और आप में से कौन बनेगा आज का बॉलीवुड सरताज, ढूंढ कर लाती

0: तो चलिए इस वक्त हम सबको इंतजार रहता है कि आखिर आज का बॉलीवुड सरताज कौन है, और बॉलीवुड सरताज हमारे बीच ही है। वो अपना नाम स्वयं बताएंगी और कहां से बोल रही है, क्या करती है, सब कुछ जानने के लिए अगर आप हैं बेताब तो लीजिए हाजिर है आज की बॉलीवुड सरताज। हेलो
1: जी मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रही हैं आप?
1: मैम मैं मीना चौधरी फ्रॉम मेरठ से बात कर रही हूँ।
0: मेरठ से मीना चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी रेनबो पर।
1: धन्यवाद
0: मीना, क्या करती हैं आप?
1: मैम मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में काम करती हूँ।
0: वाओ, उत्तर प्रदेश पुलिस में काम करती हैं और इस वक्त आकाशवाणी रेनबो सुन रही हैं, कैसे सब कुछ शांति है?
1: जी और सब कुछ बहुत अच्छा है, और वर्तमान में मैं जनपद बागपत में पोस्टेड हूँ। मैं तो गाड़ी चला के जा रहे थे और इस समय आपका चैनल हम गाड़ी के माध्यम से सुन रहे थे।
0: हमें कितना अच्छा लगता है कि आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, आप पुलिस में अपनी ड्यूटी कर रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, घर पे हैं, कहीं से भी आप हमें सुन सकते हैं और हर वर्ग के लोग सुनते हैं, बहुत मजा आता है। तो मीना, पहले तो आपको बॉलीवुड सरताज बनने की ढेर सारी बधाई करते हैं, क्योंकि आपने आंसर सही दिया है। एक बार ऑन एयर भी आप बता दीजिए, मैंने पूछा था अपकमिंग मूवी जनादेश में मुख्य भूमिका कौन निभा रहे हैं?
1: अपकमिंग मूवी जनादेश में मुख्य भूमिका में तुषार कपूर।
0: तुषार कपूर, ग्रेट। इसी के साथ आप बनती है बॉलीवुड सरताज, क्लैपिंग आपके लिए।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू
0: कंग्रेचुलेशंस। तो कैसा लग रहा है मीना जी?
1: बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरी आपसे पहली बार बातचीत हो रही है मैम। सबसे पहले मुझे आपकी आवाज बहुत अच्छी लगी, आपके बोलने का अंदाज बहुत अच्छा लगा।
0: सो स्वीट, थैंक यू सो मच, बस यही सुनना था मुझे। तो मीना जी, आप दिल्ली पुलिस में हैं, आम नागरिकों को कुछ कहना चाहेंगी?
1: आम नागरिकों को मैम बस मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे मैं अभी फिलहाल ड्राइव करते समय आपसे बात कर रही हूँ, बस कोई भी गाड़ी चलाते समय फोन पर बातचीत ना करें, रेडियो जरूर सुन सकते हैं।
0: हाँ, रेडियो सुन सकते हैं, बट गाड़ी चलाते वक्त फोन पर बात नहीं करनी है। बहुत बढ़िया मैसेज आपने दिया है, और थैंक यू सो मच आकाशवाणी रेनबो के साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह से दिल तक आप जुड़िए और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। ठीक है मीना जी,
1: नमस्कार।
0: ओके बाय।
1: नमस्कार मैम, थैंक यू।
0: तो ये थी मीना आज की बॉलीवुड सरताज, और आप भी बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज ऐसे ही आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक जुड़े रहिए। फिलहाल 1 बजे आपके लिए क्या खास होने वाला है अगले प्रोग्राम में बताती हुई जाऊंगी।

फिलहाल तो समय यही कह रहा है कि बॉलीवुड ट्रेल से लेना होगा. बबीता त्रिपाठी का विदा यानी बीटी विद बीटी का फिलहाल यहाँ पर समाप्त किया जाता है. एक गाना आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन हाँ लौट कर आऊंगी. बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, बस एक घंटे बाद लेकर आऊंगी हमारे एक्सपर्ट को रेनबो हेल्पलाइन में. और सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मानसून सीजन चल रहा है और ऐसे में अपनी स्किन की केयर करना बहुत जरूरी है. उससे ज्यादा जरूरी है हेयर फॉल को रोकना, जो हम सब के साथ कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है. और भी बहुत सारी हेयर से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं. अगर आप उन सब का निवारण चाहते हैं तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आकाशवाणी रेनबो सुनते रहना है. यहाँ हर टॉपिक पर बातचीत होती है और आज इसी टॉपिक पर बात होने वाली है, स्किन एंड हेयर केयर इन मॉनसून. और एक्सपर्ट इज नन अदर देन डॉक्टर भारती तनेजा, जो कि ब्यूटी एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़ेंगी 1 बजे. तो बिल्कुल सुनना मत भूलिएगा, लेकर आऊंगी भारती तनेजा को और आप सबके सवालों का जवाब बिल्कुल मिल जाएगा तुरंत के तुरंत. आप चाहें तो कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज करके, ये आपकी मर्जी. फिलहाल मुझे यानी बबीता त्रिपाठी को 1 घंटे के लिए दीजिए विदा. लौट कर आती हूँ और उससे पहले इंजॉय कीजिए वेस्टर्न म्यूजिक, प्ले इट कूल उत्कर्ष के साथ. बाय बाय.

0: sure many of you have your own creative hobbies, whether it's drawing, painting, calligraphy, knitting, origami, or anything else. Tell us all about what you enjoy making at 9868-107070 on WhatsApp while we take a very short break.
1: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त ये चाय बड़ी है मस्त
2: पताका चाय गजब का स्वाद
3: मन की परतें खोल जरा बिंदास बोल आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर बिंदास बोल
4: अभी तो पार्टी शुरू हुई है
5: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन
6: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती आज की धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या एवन पार्टी नंबर्स जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा
7: म्यूजिक मस्ती

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा अमरनाथ यात्रा लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग सुनिए न्यूज ऑन एआईआर ऐप डीटीएच और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: कहानियाँ सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
2: For those just tuning in, this is 102.6 Akashvani Rainbows, Play It Cool. And today we are talking about the simple pleasures of art that one can make by themselves. But before we continue, we give you Chihiro by Billie Eilish.

0: Miss Swati has tuned in to us from Patna and writes, when you read, the author only gives you words. Your mind takes those words and designs its own pictures, faces, and an entire world on its own screen. This is the greatest workout for your brain's imagination. She also admits that she loves reading novels and that experimenting with new dishes and drawing is another big passion of hers. She has also shared a sketch of hers depicting the Lord Ganesha. Dear listeners, we are very, very thankful when you do send us pictures of your artistic endeavors, but do realize that we cannot show them to you and other listeners, but we very much appreciate your thoughts, Ms. Swati, and it's always a pleasure to have you on the show. Do you have also other creative pastimes or perhaps a small art project that you're especially proud of? Let us know at 9868107070 on WhatsApp as we take this hour's last break.
1: Let's join the Mega Plantation Drive. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान बन रहा ग्रीन दिल्ली का आधार. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 70 लाख पौधारोपण अभियान शुरू. सीएम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्लांटेशन अब सुपर इजी. ग्रीन ड्राइव पोर्टल पर स्लॉट बुक कीजिए. नियरेस्ट नर्सरी से फ्री सैपलिंग्स पाइए.
2: मैं रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि क्लीन और ग्रीन दिल्ली के लिए मेगा प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बने.
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर. आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं. इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं. नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं. तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात.

0: कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: चाय ये सांकेन त्योहार के विशेष पकवान है।
2: अरे वाह वाह वाह भाई मैं तो चाय पीऊंगा।
3: ये तो बहुत अच्छा था मुझे बड़ा

0: मजा आया।
1: थैंक यू।
2: अरे भाई चौतान जी, आप तो हमें सांकेन त्योहार के बारे में बताने वाले थे।
3: हाँ हाँ वर्मा जी, सांकेन बौद्ध नया साल है जो 13 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच मनाया जाता है।
2: अच्छा
0: अंकल, क्या क्या होता है इस उत्सव में?
3: बेटा इस उत्सव को ना जल उत्सव भी कहते हैं।
2: जल उत्सव क्यों?
3: वो इसलिए कि आज के दिन भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को पवित्र जल से नहलाया जाता है।
2: अच्छा
3: इस दिन हम लोग अपने घरों को खूब सजाते हैं, जैसा कि आप इस घर में भी देख रहे हैं।
2: हाँ।
3: और हम लोग नए कपड़े भी पहनते हैं।
2: जी।
0: अरे ये तो बहुत बड़ी शोभा यात्रा है, कितनी भीड़ है।
3: हाँ बेटा, ये शोभा यात्रा पास के बौद्ध विहार जा रही है,
0: तो हम भी चले।
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो आ जाओ।
0: चलो चलो चलो, चलो।
4: थोड़ी देर में शोभा यात्रा बौद्ध विहार के पास पहुंची। वहां की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपच्चियों से बनी हुई थी। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियां लगाई गई थी और खोस खोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे।
2: बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्र पढ़ते हुए मूर्तियों को पालकियों से उतारा और उन्हें विहार में रख दिया और उन पर जल चढ़ाने लगे। हंसी खुशी के इस वातावरण में वल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं।
4: वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। वल्लरी को होली की याद आ गई। उसने चावतान जी से कहा,
0: अंकल लगता है हम लोग होली का त्योहार मना रहे हैं।
2: इतने में किसी ने चावतान जी, वर्मा जी और यमन पर एक बाल्टी पानी उंडेल दिया।
4: फिर तो लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे और सांकेन मनाते रहे। चावतान अंकल ने बताया कि सांकेन 3 दिनों तक इसी तरह मनाया जाता है।
3: बच्चों, तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु इन मूर्तियों को पालकियों में रखकर बौद्ध विहार ले जाएंगे।
0: अच्छा।
3: वहाँ वो मंत्र पढ़ पढ़कर इन मूर्तियों को इनके स्थान पर प्रतिष्ठित कर देंगे।
0: जी अंकल।
3: गांव के लोग तीसरे दिन बौद्ध विहार जाएंगे और बौद्ध भिक्षु उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहेंगे, खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी। क्या बोलेंगे?
5: खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी।
3: हाँ, और फिर कहेंगे, हिल मिल कर सब नाचें गाएं, नए साल में खुशी मनाएं।
5: हिल मिल कर सब नाचे गाए, नए साल में खुशी मनाए।
2: उत्सव समाप्त हो गया था। वल्लरी, यमन और उनके पिताजी घर वापस जा रहे थे। बच्चे सोच रहे थे, कितना सुंदर है हमारा देश, तरह तरह के त्योहार, भाषाएं, संस्कृतियां और लोग। सचमुच विविधताओं का संगम है हमारा भारत।
6: अभी आपने सुनी कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित ये नाट्य प्रस्तुति। अब आपके लिए कुछ करने को, पूर्वोत्तर भारत में मनाए जाने वाले अन्य जनजातीय त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ये पता कीजिए कि सांगकेन मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है और साथ ही साथ सांगकेन त्योहार पर चावल से बने पकवान एवं मिठाइयों के नाम भी मालूम कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज और राजेश काम्बोज, बाल कलाकार वान्या और सोहम, आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण अरशद अहमद। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सांगकेन। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, और अगला कार्यक्रम है तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर।
7: देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत ये गीत है जिसे भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आम जनता द्वारा जलूसों में गाया जाता था। इस गीत के द्वारा देश के

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल।
2: ये कार्यक्रम बच्चों को सुंदर गीत और संगीत के माध्यम से रोचक गतिविधि कराता है। कार्यक्रम में बच्चों को व्यायाम के महत्व से भी खेल खेल में परिचित कराया गया है और विनम्र व्यवहार का महत्व भी समझाया गया है।
3: क्लैप एंड स्माइल।
4: हेलो फ्रेंड्स।
5: हेलो।
4: आई नो यू डोंट वॉन्ट टू बी सैड। इवन आई डोंट वॉन्ट यू टू बी सैड। So, we will sing the happy song again, but with a difference.

0: Friends, you were just listening to this song. We hope you enjoyed it.
1: Concept and coordination by Dr. R. Meghanathan. Sung by Neha and Children. Recorded by Bati Langlingdo. Produced by Ajit Horo. This song is presented to you by CIET NCERT, New Delhi, India. श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल. और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है. तो अब अजीत,
2: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
1: कुसुम लता,
2: जगबंधु,
1: चेतना
2: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए.
1: नमस्कार, नमस्कार.
3: उमंग उमंग उमंग उमंग
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: हमारा दिल बिना रुके दिन रात हमारे पूरे शरीर तक रक्त पहुंचाने का काम करता है। हम सो रहे हों, काम कर रहे हों, हंस रहे हों, तनाव में हों या रेडियो डॉक्टर सुन रहे हों, हमारा दिल लगातार हमारे लिए काम करता रहता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपने दिल के लिए उतना ही काम करते हैं जितना दिल हमारे लिए करता है? आज हम रेडियो डॉक्टर में यही जानने की कोशिश करेंगे। स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। हम जानेंगे आज इस कार्यक्रम में कि हम अपने दिल की देखभाल ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, क्या करने की आवश्यकता है कि हमारा दिल लंबे समय तक हमारा साथ दे, यानी बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीजेस की, हृदय रोगों का रोकथाम कैसे किया जाए। और इस विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए जैसे हर बार हमारे साथ विशेषज्ञ होते हैं, हमारे आज के विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका तारुफ कराते हैं, हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हेड डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन एम्स न्यू दिल्ली से डॉक्टर राकेश यादव। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर राकेश, आकाशवाणी के FM रेनबो के स्टूडियो में आपका।
2: नमस्कार।
1: और डॉक्टर साहब से बहुत सारी बातें हम पहले भी अपने कार्यक्रमों में जानते रहे हैं, कैसे अपने हृदय को स्वस्थ रखें ये डॉक्टर साहब हमें बहुत सरल शब्दों में बताते हैं और आप हमें लिखते रहते हैं कि डॉक्टर साहब को जल्दी बुलाइए। तो लीजिए, आज वो दिन आ गया है, डॉक्टर साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं, रेडियो डॉक्टर में हैं और वो आपकी जितनी परेशानियां हैं उनको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप हम तक पहुंचेंगे ये आपको वादा करना है। मैं थोड़ी सी देर में आपको बताऊंगी हमारे फोन नंबर, हमारे व्हाट्सएप

0: नंबर जो आप वैसे जानते हैं, लेकिन उन नए श्रोताओं को जो आज पहली बार इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, लेकिन बता दें कि क्योंकि हृदय रोग से के बारे में जब हम बात करते हैं तो आजकल काफी लोग डॉक्टर साहब चिंता में ये हैं कि बहुत जो युवा जो जनरेशन है या यूथ है वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, और आजकल हम बहुत न्यूज में देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि यंगस्टर्स है जिम करते करते डेथ हो रही है, अचानक से कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। तो हमने सोचा इस कार्यक्रम को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाए और अपने यूथ के पार्टिसिपेशन को भी इसमें हम यूथ के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी इंक्लूड करने की कोशिश करें। तो आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक ऐसे ही यूथ रिप्रेजेंटेटिव को जो कि एक कॉर्पोरेट में काम करती हैं, उनका ऐसे ही बिजी शेड्यूल है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। तो हम सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में है परिधि मित्तल, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी रेडियो डॉक्टर में।
1: नमस्कार।
0: तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि किस तरह से यूथ को ये अफेक्ट कर रहा है ये भी जानेंगे, पहले थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए किस तरह का लाइफस्टाइल है आपका और क्या जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से आज आप।
1: जरूर, मैं एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में काम करती हूँ और मेरी तरह ऐसे बहुत सारे युवा होंगे जो आजकल मेरी ही तरह की लाइफस्टाइल जी रहे होंगे। काम चलते अक्सर हमने देखा है कि हमारी देर रात तक मीटिंग्स होती है, अलग अलग टाइम स्केड्यूल्स और टाइम जोन के साथ हमें काम करना पड़ता है, इसलिए सोने और उठने का कोई फिक्स स्केड्यूल नहीं रहता। कभी कभी ये भी होता है कि हम पूरे पूरे दिन लैपटॉप और अपने मोबाइल स्क्रीन के सामने हैं, बैठे हुए हैं, ब्रेकफास्ट भी टेबल पे ही कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, डेडलाइंस पर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, तो कोई एक रिलैक्सेशन ही नहीं है। तो इसी टाइप का मुझे लगता है काफी यूथ का लाइफस्टाइल रहेगा। तो मेरे कुछ प्रश्न है जो मैं इस कार्यक्रम के थ्रू पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब से, बहुत खुश हूँ
0: जी। डॉक्टर साहब सामने बैठे हुए हैं, हमारे परिधि यहाँ हैं और बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो रेडियो के उस पार बैठे हैं या फोन से हमें सुन रहे हैं। हमारा ये कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी आप सुन रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से, तो बिल्कुल जुड़ जाइए हमारे साथ। अगर आपके मन में भी प्रश्न है जिस तरह से परिधि के मन में प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, व्हाट्सअप का भी मैसेज बॉक्स खुला है, और आपकी तरफ से कुछ प्रश्न मेरे भी होंगे जो मैं पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब से। तो नोट कर लीजिए हमारे फोन नंबर्स 2342108023421082, और अगर आप दिल्ली से बाहर से हमें कॉल लगाना चाहते हैं तो 011 जरूर लगाइए। व्हाट्सएप पर लिखना चाहते हैं तो 9868107070 पर हमें लिख सकते हैं। एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब, पहले मैं ये आपसे जानना चाहूंगी जो हमारा विषय है आज, हम दिल की बात करना चाहते हैं, कौन कौन सी आम तौर पर बीमारियां जो है होती हैं हृदय संबंधी।
2: देखिए, हृदय में बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। जब आप जन्म लेते हैं तो आपके वॉल्व ठीक से नहीं डेवलप होते, आपके हार्ट में छेद होते हैं, उन्हें हम कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कहते हैं। फिर जब आप युवा होते हैं तो आपके इन्फेक्शन हो सकता है, आपके वॉल्व खराब हो सकते हैं, उनको हम रूमेटिक हार्ट डिजीज कहते हैं। ये वॉल्व खराब होना आपके बचपन से भी हो सकता है, इन्फेक्शन से भी हो सकता है। फिर जैसे जैसे आप बढ़ते हैं आपकी मसल में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके कंडक्शन सिस्टम में, इसे नहीं कहते आपकी हार्ट बीट कम हो गई या हार्ट बीट बढ़ गई, आपके आर्टरीज जो होती हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, उससे हार्ट अटैक हो सकता है। कभी कभी माना जाता है कुछ वायरल फीवर हुए जिससे हार्ट की मसल वीक हो गई, हार्ट के ऊपर एक ठीक पेरिकार्डियम होता है उसकी भी बीमारी हो सकती है। तो बहुत तरह की बीमारियां हार्ट की होती हैं, और हार्ट की बीमारियों के साथ साथ जो ब्लड वेसल्स बाहर जाती हैं उनकी भी बहुत बीमारियां होती हैं। तो एक लंबी लिस्ट है इसमें, कैंसर भी हार्ट में हो सकता है।
0: अच्छा,
2: बहुत मेलिग्नेंसी। तो हार्ट की बीमारियां भिन्न भिन्न तरह की हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है जिससे हार्ट अटैक पड़ता है, जो रूमेटिक हार्ट डिजीज है जिससे वॉल्व खराब हो जाते हैं, जो कंडक्शन सिस्टम डिजीज है जिससे वॉल्व हार्ट बीट कम हो जाती है और ज्यादा हो जाती है। तो ये तीन ग्रुप सबसे कॉमन है हृदय रोगों को लेके
0: जी। लेकिन हम हर विषय पर बात कर सकते हैं अगर आपके कोई प्रश्न है तो, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने बोला क्योंकि ज्यादातर लोगों को उसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं हम, तो हम चाहेंगे कि हम बहुत सी आम बातें आज इस कार्यक्रम में शामिल करें क्योंकि अवेयरनेस इज द की। अगर हमें जानकारी होगी कि किस तरह से इसको पहचाना जाए, किस तरह से पहुंचा जाए, क्योंकि इसमें यह भी कहा जाता है डॉक्टर साहब कि एक गोल्डन रूल है कि जितना जल्दी इसमें एड मिल जाती है उतना इसमें बचने के चांसेस होते हैं। तो हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप अपने प्रश्न हम तक जरूर पहुंचाएं फोन के माध्यम से या लिख कर, जैसा भी आपको कन्वीनियंट हो आप जरूर करें। हम यहां पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, लौट कर आएंगे, इंतजार कर रहे हैं हमें आपके प्रश्नों का, इंतजार कर रहे हैं हम।

0: आप है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में और बिल्कुल दिल तो चाहता है, बहुत सारी चीजें चाहता है, लेकिन सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारा दिल स्वस्थ रहे, क्योंकि वो स्वस्थ रहेगा तो हम हर चीज को एंजॉय कर सकते हैं बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हेलो
1: जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार,
1: प्रीति गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
0: जी गौतम साहब नमस्कार,
1: मेरा पूछना है कि आयुर्वेद में कहा गया है कि जो खट्टे पदार्थ है वो दिल के लिए हानिकारक है, क्या एलोपैथ में भी ऐसा माना जाता है या मिथक है? दूसरा,

0: एक बीमारी है पेल्पिटेशन, दिल घबराना, क्या ये एक डिसऑर्डर है या एक कंडीशन है, कृपया विस्तार से बताएं।
1: धन्यवाद। खट्टे पदार्थ, किस टाइप के खट्टे पदार्थ की बात कर रहे हैं? जैसे आप नींबू की बात कर रहे हैं, जैसे आप मौसमी की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल खतरनाक नहीं है, रादर फायदेमंद है वो। तो ये आयुर्वेद में जो कहते हैं कि खट्टे पदार्थ, उसमें हो सकता हो कोई और चीज के बारे में बात कर रहे हो, बट हम फल की बात ही करेंगे। जो खट्टे फल होते हैं, इमली बहुत अच्छी है, एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छे होते हैं उसमें, तो खट्टे पदार्थ ऐसा बिल्कुल गलत है कि दिल के लिए हार्मफुल होते हैं
2: जी।
1: दूसरा, टैकीकार्डिया जो है वो एक बीमारी है। जब आपकी हार्ट बीट 100 से ऊपर जा रही है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम है। आप एंग्जाइटी में है तो भी टैकीकार्डिया हो जाएगा, आपने कफ सिरप पी रखी है तो भी टैकीकार्डिया हो जाएगा, आपको टैकीकार्डिया की बीमारी है, बहुत टाइप की बीमारी ये होती है, पीएसवीटीज कहते हैं, एक्टोपिक एट्रियल टैकीकार्डिया कहते हैं। तो अगर आपकी हार्ट बीट 100 से ज्यादा हमेशा से चलती है तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। हाँ, दौड़ते समय अगर आपकी हार्ट बीट 100 जाती है तो एक नॉर्मल फिनोमिना है, बट रेस्टिंग स्टेज में अगर आपकी हार्ट बीट 90-100 चल रही है, एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाएं। हम लोग इसको अच्छा नहीं मानते।
2: इससे क्या हो, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं?
1: हार्ट अटैक के चांसेस है, अगर आपकी हार्ट बीट बहुत लंबे समय तक ज्यादा चल रही है तो इससे आपका हार्ट का फंक्शन कम हो सकता है।
2: ओके, और इट कैन लीड टू फर्दर
1: हार्ट फेलियर लेटर ऑन।
2: ओके,
1: तो हम उसे टैकीकार्डिया इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं।
2: ओके, तो दिखाना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: जी। तो किस तरह से पता लगे? मैं एक्चुअली यही पूछना चाह रही थी कि कुछ ऐसे संकेत होते हैं या कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिससे आदमी सचेत हो जाए कि हाँ मुझे जाना चाहिए डॉक्टर के पास, क्योंकि नॉर्मली ऐसे तो लोग जाते नहीं है, चेकअप भी रूटीनली कई लोग नहीं कराते।
1: हमेशा याद रखिये, आप एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे, आपको कोई सिम्टम नहीं था, सडनली आपने महसूस किया कि मैं चलती फिरती हूँ तो मुझे सीने में दर्द होने लगता है, मैं चलता हूँ तो मुझे सांस फूलने लगती है, मुझे चक्कर आ रहे हैं आजकल, मैं खड़ा होता हूँ तो सडनली आंखों के सामने अंधेरा छा जाता, मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही है, मेरे दिल की धड़कन कम चल रही है, मेरे चलने में सांस फूलने लगी, पहले मैं 2 स्टेयर चल लेता था अब नहीं चल पाता हूँ, हमने अपने नाखूनों में नीलापन देखना शुरू कर दिया, पैरों में सूजन देखना शुरू कर दिया। तो ये सारे के सारे इंगित करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं हार्ट की प्रॉब्लम है, उसको जरूर और तुरंत इसका इलाज करें।
2: जी, तो अपने शरीर को देखें, उसको ऑब्जर्व करें, कुछ बदलाव अगर फील होता है तो जरूर डॉक्टर के पास जाएं। और कारणों की बात हम कर रहे थे, आज परिधि हमारे साथ हैं, बहुत सारे कारण आपने बताया हो सकते हैं हृदय रोग के, तो आप कुछ पूछना चाहेंगे क्योंकि आप चाह रही थी युवाओं से संबंधित कुछ प्रश्न करना।
3: बिल्कुल, क्योंकि यही मेरा पहला प्रश्न था कि पहले हार्ट डिजीजेस तो ज्यादातर 50-60 साल उम्र की बीमारी मानी जाती थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि 25-40 साल के युवाओं में भी हार्ट अटैक्स, हार्ट डिजीजेस, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है, हमें सुनने में अब ज्यादा आने लगा है। तो डॉक्टर, आपके हिसाब से ये बढ़ते ट्रेंड के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, क्या हो सकता है?
1: देखो, जो हार्ट अटैक बचपन में यूथ में होता था वो हार्ट की बीमारी होती थी, रोमेटिक हार्ट डिजीज, जो गरीबी की बीमारी थी, उनको वाल्व में इन्फेक्शन हुआ, वाल्व खराब हो गया। दूसरी होती थी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, जो बचपन में पैदा होते ही होती थी, यूथ पे ही आ जाती थी। कुछ बीमारी होती थी कार्डियोमायोपैथी, जो यूथ में होती थी। अब यूथ में जो हम, आप जिस बात पे कह रहे हैं कि आपको हार्ट अटैक हुआ, आपकी कोरोनरी आर्टरी थी, आपको उसमें ब्लॉकेज आ गया, वो ब्लॉकेज बंद हो गया, हाँ यूथ में थोड़ा बढ़ रहा है। कारण उसका है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं कि आप काम कर रही हैं तो आपकी लाइफस्टाइल खराब है, जो आप खाते पीते, स्मोकिंग का ट्रेंड बहुत बढ़ गया। स्मोकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है हार्ट अटैक होने का, प्लस ड्रग्स का, कोकेन का इंटेक बहुत है, जो इलिसिट ड्रग्स है उनसे हार्ट अटैक बढ़ता है। फिर आपने देखा सिडेटरी हैबिट्स, आपके माँ बाप को हार्ट की प्रॉब्लम थी, आपका बच्चा 12 साल का है, उसका वजन है 100 किलो, आपका बच्चा 20 साल का हुआ, उसका वजन हुआ 120 किलो, वो सिर्फ घर में बैठा रहता है, सिर्फ जंक फूड खाता है, सिर्फ हाई कार्ब्स डाइट खाता है, वजन बढ़ रहा है, डायबिटिक हो गया, हाइपरटेंसिव हो गया, तो उसकी हार्ट अटैक होने की संभावना 30-40 साल में ही हो जाएंगी। वही बच्चा इसके माँ बाप को हार्ट अटैक कोरोनरी आर्टरी डिजीज थी, अपनी उम्र को साथ के ही रखता तो हो सकता उसको हार्ट अटैक 70 साल में होता। तो एक ये भी कारण है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, जो युवाओं में लाइफस्टाइल है, और तीसरा है आबादी बढ़ रही है, हमारा YouTube बढ़ रहा है, हमारा सोशल मीडिया बढ़ रहा है, तो पता भी लग जाता है,
2: ये भी बात है। लेकिन जैसे बहुत सारी चीजें होती है जो आपको इम्पैक्ट करती है, जो आप देखते हैं कि कोई इतना कॉन्शियस है अपने बॉडी बिल्डिंग के लिए, ये रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है, जिम जा रहा है, पर इस तरह की चीजें जब आप अपने सामने देखते हैं कि बिल्कुल जिम करते करते, एक्सरसाइज करते करते, और एज भी कम है, और वो रेगुलर वो रहा है।

0: हैबिचुअल इन एक्सरसाइज, तो हमें लगता है अरे ये एक्सरसाइज करने के बाद भी हो रहा है, तो क्या कारण है?
1: पहली बात आप ये जान लीजिए कि हार्ट प्रोटेक्टिव एक्सरसाइज एक माइल्ड एक्सरसाइज है.
0: Okay.
1: अब 40 मिनट एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, उसके ऊपर करते हैं तो ये मत मानिए हार्ट आपका प्रोटेक्ट है. इन लोगों में जो चीज हुई है जैसे जिम करते करते, ये बेसिकली इनमें कोई ना कोई हार्ट की प्रॉब्लम थी जो इन्होंने दिखाई नहीं. उनको सिम्टम्स थे जो इन्होंने इग्नोर किए.
0: अच्छा.
1: अब एक बहुत बड़े कॉमेडियन जिम करते समय जिनकी डेथ हो गई, वो इसलिए हुई क्योंकि उनको एंजाइना हुआ, उनके हार्ट में 7-8 स्टंट डले हुए थे, तो उनको एंजाइना होने लगा और उन्होंने कहा मैं जिम से एंजाइना ठीक कर लूंगा. अब वो 10 की रफ्तार से दौड़े तो हार्ट अटैक होने ही था. तो जो ये तरह की घटनाएं होती है ज्यादातर आइदर इनमें कुछ चैनलोपैथीज होती है, कुछ ऐसी बीमारियां होती है हार्ट की जिसको हम लोग मानते हैं कि स्ट्रेस से जिम करने से हार्ट अटैक हो सकता है, तो इनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है. तो हम हमेशा कहते हैं अगर आप ज्यादा जिम करना चाहते हैं एक बार अपने को डॉक्टर को जरूर दिखा के करें. बहुत बार हमने देखा है जिम करने जा रहे हैं कभी ब्लड प्रेशर ही नापा. अब जिम करते करते एक दिन को सांस फूलने लगी तो देखा 200/100 बीपी था. 200/100 बीपी में आप जिम करोगे तो आपकी हार्ट की ऐसी तैसी होनी ही होनी है. तो ये है इंपॉर्टेंट चीज की
0: जी, जी.
1: ये दोष आप जिम को मत दीजिए, दोष उस इंसान को दीजिए जिसने वो चेक नहीं किया.
0: जी, कई बार ऐसा भी होता है जैसा आप बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब कि हमारे हमने ये देखा है इंडिया की मैं बात कर रही हूँ कि अपने आप से लोग टीवी देखकर शुरू कर देते हैं एक्सरसाइज करना कि ये दिखाया जा रहा है मैं कर लूं, या जिम चले गए वहां पे उन्होंने बोला मुझे जिम ज्वाइन करना है और उधर में आपका इंस्ट्रक्टर भी नहीं है, आप बस चढ़ गए आप किसी मशीन पे ट्रेडमिल पे, मतलब इट इज नॉट गाइडेड एज सच एंड इट इज नॉट कस्टमाइज एज सच. तो ये सारी चीजें भी नुकसान कर सकती हैं और शायद यही वो इम्पैक्ट डालती हैं जब आप इतनी अवेयरनेस के साथ एक्सरसाइज नहीं करते हो.
1: आपको अगर एथलीट नहीं बनना है, आपको बैडमिंटन प्लेयर नहीं बनना है, तो आप सुबह उठिए एक नॉर्मल वॉक करिए 5-6 किलोमीटर पे. वॉक करने के बाद थोड़ी स्ट्रेचिंग करिए. योगा में हमें पीटी सिखाते थे हाथ को ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, आगे ले जाओ, थोड़ा पीछे स्ट्रेच कर लो, थोड़ा साइड में स्ट्रेच कर लो, इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज. तो आप अगर एक स्वस्थ जीवन जीना चाहती है तो वॉक करिए, वॉक करने के साथ साथ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, आपके लिए वो सफिशिएंट है. अगर आप बॉडी बनाना चाहती हैं तो किसी की सहायता लीजिए, कोई ट्रेनर की सहायता लीजिए. आप योगा करना चाहती हैं छोटे मोटे योगा आप आराम से कर लीजिए, बट अगर आप अच्छा योगा करना चाहती हो आप टीवी देख के करेंगी तो कहीं ना कहीं आप अपने को नुकसान पहुंचाएंगे.
0: जी, बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं और हम चाह रहे हैं कि ये हाईलाइट हो हमारे इस प्रोग्राम में, ये फैक्टर्स जो कई बार हम इग्नोर करते हैं. हमें पता होता है हम अच्छे के लिए कर रहे हैं एक्सरसाइज या टीवी भी देख कर रहे हैं तो अच्छे के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली हमको हार्म पहुंचा रहा है ये हम नहीं जान पाते हैं. तो जो लोग भी कार्यक्रम सुन रहे हैं हम ये चाहते हैं कि आप जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं उनकी एडवाइस फॉलो करें. एक श्रोता वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर. हेलो
2: हेलो
0: हेलो जी, नाम बता दें अपना.
2: हाँ जी, मैं श्याम, श्याम सुंदर.
0: जी जी, बताएं कहाँ से बोल रहे हैं.
2: श्याम सुंदर धवन.
0: जी जी, हाँ बताएं क्या पूछना है.
2: ऐसे है नमस्कार जी.
1: नमस्कार
2: सर, मेरी विशेषता 1983 में वारल टाइप का मिलता पीजीएल चंडीगढ़. सारा 2016 में सब लोअर 16 में तो वो वाल
0: साहब हमें समझ नहीं आ रहा है, आपकी आवाज ब्रेक हो
1: गई. ऐसा लग रहा है कि आप बता रहे हैं कि आपके मिसेज का वॉल्व सुकुड़ गया तो क्या करें.
0: जी,
1: अगर वॉल्व सुकुड़ गया तो आप डेफिनेटली कार्डियोलॉजिस्ट से मिले, अपना इको कराएं और उसका इलाज.
2: 2016
0: आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है श्याम जी. अगर आप दोबारा लगाकर बात करना चाहें तो प्लीज करें, क्योंकि हम बात नहीं आपसे कर पा रहे हैं. और बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आ गए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से भी, हमारे श्रोता हमारे गेस्ट का स्वागत कर रहे हैं. ये क्वेश्चन है, 48 इयर्स की है एज है इनकी और इन्होंने जिम ज्वाइन कर रखा है. इन्होंने लिखा है जिम स्टार्ट करने से पहले कोई मेडिकल टेस्ट, जैसे हम अभी बात कर ही रहे थे उस पर इनका आया प्रश्न कि क्या कोई मेडिकल टेस्ट करवाना चाहिए या नहीं जिससे पता चले कि मैं फिट. चानेश्वर गोत कराची से ये हमारे श्रोता हैं अमर रमेश कुमार खत्री.
1: देखिए बिल्कुल है, अगर आप बहुत लाइट सा जिम करना चाहें तो आप अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करा लें, आप अपनी शुगर जरूर चेक करा लें. आप और इसके पहले ये जरूर जाने कि आपको कोई सिम्टम्स तो नहीं है. आपकी सांस फूलती है तो बिना डॉक्टर के दिखाए जिम ना जाए. आपको चलने में सीने में दर्द